छापन सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर आपके अपने ब्रेकफास्ट शो को। अच्छा, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने सुबह सुबह सोचा हो कि आज तो मैं ऑफिस टाइम से 10 मिनट पहले पहुंचूंगा और ठीक उसी दिन आपको रास्ते में अपने गाड़ी को लेकर रोना पड़ा हो, भाई टायर पंचर हो गया हो, या फिर ऐसा हुआ हो कि चाबी ही कहीं गायब हो जाए। हम प्लान और कुछ करते हैं और लाइफ हमारे साथ गुगली खेल देती है और हमारा प्लान धरा का धरा रह जाता है। ऐसे में चिढ़ने की बजाय जोर से हंसिए और बोलिए इट हैपेंस, क्योंकि लाइफ का असली मजा इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी में है। मूड को बिल्कुल लाइट रखिए और सुनते रहिए सताक्षी के साथ आपका सुपर हिट शो, और मैं प्ले करती हूँ एक सुपर हिट गाना आपके लिए।

सो वेलकम बैक, इट हैपेंस में एक बार फिर से सताक्षी के साथ हैं आप रेडियो ब्रिस्पानी 1701 एम पर। और अब बात करते हैं जरा हमारी सेहत की। जी हाँ, हेल्थ है तो सब है। और भाई जब मैं हेल्थ की बात करती हूँ तो मेरा मतलब फैंसी एवोकाडो टोस्ट, महंगे जिम सप्लीमेंट्स या फिर सुबह 4 बजे उठकर 10 किलोमीटर दौड़ना, इससे बिल्कुल भी नहीं होता है। आजकल सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स को देखकर हमें गिल्ट होने लगता है कि यार मैं तो इतनी परफेक्ट लाइफस्टाइल जी ही नहीं पा रही हूँ, या मेरे लिए तो ये लाइफस्टाइल है ही नहीं। अरे भाई वो बस 15 सेकंड की रील है, असलियत में सब नॉर्मल है। अगर आपने आज सुबह वर्कआउट मिस किया है और उसकी जगह एक एक्स्ट्रा पराठा या डोनट खा लिया है तो कोई पाप नहीं कर दिया। सम टाइम इट हैपेंस। फिटनेस का मतलब खुद को सजा देना नहीं होता है। आज जिम नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, शाम को पसंदीदा गाना लगाकर कमरे में ही 5 मिनट डांस कर लीजिएगा। बॉडी को मूव करिए, खुश रहिए और गिल्ट को टाटा बाय बाय कहिए। इम्पोर्टेंट ये है कि हमें अपनी बॉडी को वर्कआउट देना है। सुबह जिम नहीं जा पाए, शाम को दे लीजिए, है ना। और जिस तरह से आपका मन करे उस तरह से वर्कआउट कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा एक्सरसाइज ही करनी है या हमेशा 10 किलोमीटर दौड़ ही लगानी है। भाई जितना बॉडी अलाउ करे उतना ही करना है। आइए फिलहाल एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ और एंजॉय करते रहिए इट हैपेंस। जी आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 एएम।

0: मम्मी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

सो वेलकम बैक, इट हैपेंस में सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं कुछ बहुत ही प्यारी और खूबसूरत बातों को। भाई मेरा आपका साथ इस इट हैपेंस में बरकरार है, जारी है और आगे भी जारी रहेगा। वैसे कभी कभी हम बिना किसी वजह के ऐसा दिल करता है ना कि रो लें, या गुस्सा आए या लगे कि बस सब कुछ भारी हो रहा है, तो अपने जज्बातों को दबाइए नहीं, अपने इमोशंस को खुद के अंदर सप्रेस मत होने दीजिए। हम हमेशा पॉजिटिव दिखने के चक्कर में अपने असली इमोशंस को छुपा जाते हैं दोस्तों। उदास होना भी उतना ही नॉर्मल है जितना खुश होना, है ना। अपने किसी अच्छे दोस्त को कॉल लगाइए, दिल हल्का करिए, या बस एक अच्छी सी नींद ले लीजिए। कल एक नया दिन था, कल एक नया दिन होगा, आज एक नया दिन है, इसलिए बहुत सारे इमोशनल जो इम्बैलेंसेस है ना, उनके चक्कर में पढ़कर या उन्हें बार बार सोचकर आप उनमें खुद को और मत फंसाइए। खुद को नॉर्मल करिए और ये याद रखिए कि सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, सबके साथ होता है। इट ऑलवेज हैपन। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ, इंजॉय कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। रेडियो प्रस्थानी सताक्षी के साथ हैं आप।

सताक्षी के साथ कुछ बहुत ही प्यारे और खूबसूरत ट्रैक्स को इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। यू नो, हम हमेशा बड़ी खुशियों के इंतजार में बैठे रहते हैं कि जब गाड़ी खरीदेंगे तब पार्टी करेंगे, जब नया घर होगा तब खुशी मना लेंगे। लेकिन बड़ी खुशी तो जिंदगी में 2 या 3 बार ही आती है ना, बाकी दिन क्या करें? बाकी दिन इन छोटी छोटी खुशियों को, छोटी छोटी चीजों को ढूंढिए और उन्हें सेलिब्रेट कीजिए। जैसे रास्ते में कोई प्यारा सा डॉगी दिख गया, रेडियो पर आपका पसंदीदा पुराना गाना प्ले हो गया, या फिर चाय बिस्कुट का कॉम्बिनेशन आपके लिए परफेक्ट बन गया। ऐसे बहुत सारे फेजेस होते हैं जिनमें आप इन छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कर सकते हैं, इन्हें ढूंढ सकते हैं और इन्हें इंजॉय भी कर सकते हैं, है ना? क्योंकि जिंदगी परफेक्ट होने में नहीं बल्कि इन खूबसूरत कमियों के साथ जीने में है। तो चलिए, अब ज्यादा सोचिए नहीं और एंजॉय कीजिए ये अगला ट्रैक और सुनते रहिए मेरे साथ इट हैपेंस आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। बदले

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हर रोज कुछ नया कुछ अधूरा सा होता है, हर रोज कुछ नया कुछ अधूरा सा होता है, यही अधूरी बातें ही तो जिंदगी का किस्सा पूरा करती हैं, यही अधूरी बातें ही तो जिंदगी का किस्सा पूरा करती हैं। तो शिकायतों को छोड़िए और मुस्कुराकर गले लगाइए आज को, शिकायतों को छोड़िए और मुस्कुराकर गले लगाइए आज को, क्योंकि जो आज है वही तो कल की याद बनता है। तो मुस्कुराइए, जिंदगी आपके साथ है, जिंदगी का एक और फेज एक और दिन आपके साथ है। जिस तरह से कल का दिन गुजर गया है उसी तरह से आप भी कल की याद मिटा दीजिए और आज को एक्सेप्ट कीजिए। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ, और सुनते रहिए ठापन्स आपके अपने रेडियो प्रस्वानी पर।

0: तो बस अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि मुझे लेनी होगी आपसे विदा। ये सफर आपकी मौजूदगी में इन बातों के साथ बहुत ही खास और स्पेशल था, लेकिन कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। सो थैंक यू सो मच मुझे अपनी सुबह का हम सफर बनाने के लिए। जाते जाते बस वही एक बात आपसे कहनी है जो हमेशा आपको याद दिलाती हूँ कि चाहे बॉस की डांट हो, ट्रैफिक जाम हो या लाइफ में कोई भी उलझन हो, एक डीप ब्रीथ लीजिए, गहरी सांस लीजिए और मुस्कुरा कर बोलिए इट हैपेंस। मजे करते रहिए, जिंदगी को जीते रहिए, कीप शाइनिंग कीप स्माइलिंग। होती है कल एक बार फिर से आपके साथ इसी सफर इट हैपेंस में मुलाकात। नमस्कार।
1: बदले

डॉज बस से नहीं खबरों की वधेरे जानकारी है तो सुझाव देने लिए साडे नाल जुड़ सकते हो, संपर्क कर सकते हो, तो सानू ईमेल भी कर सकते हो। साडी ईमेल आईडी bruswani@bruswani.com इस नाल ही तुसी साडे नाल साडे फेसबुक पेज के जरिए भी जुड़ सकते हो। साडा फेसबुक पेज है रेडियो Bruswani। फिर हाजिर होवांगे ताज़ा तरीन खबर लेकर। तकली दे इजाजत, सत श्री अकाल।

0: वेलकम आदाब जी, सत श्री अकाल जी। तुसी बने हुए हो जी थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्तानी 101.9 ते जी आप जी संदेश शलक दे नाल बन चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा बहुत सोहणा जवड़ा शुरू हो चुका है जी, ते इन्हां गल्लां नूं असीं लगाउणा पंजाबी गीतां दा तड़का। तुसी की खाणा है, तुसी जुड़ना है साडे नाल, तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो ब्रिस्तानी 101.9 साडा फेसबुक पेज है जी, ते ब्रिस्तानी@ब्रिस्तानी.com साडी ईमेल आई डी है। जरिए जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा तुसी अपना उप्पर साडे नाल गल्लां बातां देखो जरूर जरूर करते रहा करो, है ना। तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो फटाफट दे नाल। ते मैं बस सुने वापस आनी हाँ, थोनू कला कि दिन छड़ के जाना, एक गीत थोनू सुना नहीं हैगी। मैं तुसी ना गीतां नूं इंजॉय करो, मैं हुणे वापस आई।
1: ग्रेनेड हो गए ने।
2: एक्सक्यूज मी सर, हां सर एक प्रॉब्लम हो गई।
3: क्या?
2: की मॉडल नहीं आ रही।
3: क्यों
2: सर? आपकी मोबाइल पे तो फोन आ रहा था कि वो नहीं आएगी।
3: ला फोन दे।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101 एम ते जी आर चे संदेश अलग दे नाल तुसीं बने होए। देखो बॉलीवुड दे विच ना एक अदाकारा अजिही हैगी है जिसनूं कदे कोई भुल ही नहीं सकदा। बेशक वो अज साडे विचकार नहीं है पर हमेशा जदों भी स्क्रीन ते आउंदी है ना तां पुरानियां यादां ताज़ियां कर दिंदी है। नाम है श्रीदेवी। श्रीदेवी ने ना बहुत छोटी उम्र विच एक्टिंग दी दुनिया विच कदम रख लिया सी। अपने करियर दे दौरान श्रीदेवी ने सदमा, नगीना, चांदनी, इंग्लिश इंग्लिश, मिस्टर इंडिया, जा जुदाई, चालबाज वर्गियां कई यादगार फिल्मां कीतियां जिन्हां तों उन्हां नूं वक्री पहचान मिली। तां मैं सोचिया कि अज श्रीदेवी दियां कुछ फिल्मां बारे गल करिए, पर उन्हां फिल्मां बारे नहीं जिन्हां दे करके ओह फेमस होई, क्योंकि ओह फिल्मां तां सब नूं पता ही है कि ने जुबान ते रहिंदियां ने ना, जिवें मिस्टर इंडिया हो गई, चालबाज हो गई, इन्हां नूं किवें भुल सकदा है कोई। हां, उन्हां फिल्मां बारे गल करदे हां जिन्हां नूं श्रीदेवी ने रिजैक्ट कर दित्ता सीगा। दस दो, तुसीं हैरान रह जाओगे जे तुसीं उन्हां फिल्मां बारे जाणोगे तां। करदी हां तुहानूं हैरान, पर पहलां सुणो एक गीत।

0: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: Y'all really got it fucked up right now.

जी एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101.4 संदेश अलग दे नाल से बने हुए हो। अमिताभ बच्चन के नाल श्रीदेवी ने बहुत सारिया फिल्मा की। देखो सवाल थोड़े लिए फिर मैं यही छड़ दिनी हाँ कि तुम दसो कि अमिताभ बच्चन के नाल केड़िया फिल्मा है जिड़िया वो श्रीदेवी ने कीतियां या केड़ी सब तो ज्यादा हिट रही है, दसो दसो तुम जवाब दो। रेडियो बसवाणी 101.4 साइड फेसबुक पेज है bisoni@bisoni.com साड़ी ईमेल आई डी है, कोई भी जरिए अपना के जवाब दियो। तो मैं हूँ इस जुड़ी हुई है अगली फिल्म का नाम दस दिनी हाँ जी श्रीदेवी ने रिजेक्ट की थी, तो फिल्म सी मुहब्बते। जी हाँ मेकर्स इस मूवी अमिताभ बच्चन के ओपोजिट श्रीदेवी लैना चाहते सी पर उन्होंने उसनु करन तो मना कर दिता सी। इस फिल्म नू भी करती सी कोरीना, बाद विच किरदार ही फिल्म तो हटा दिता गया, किसी ने रोल किया ही नहीं।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101 एम ते जी आर चे संदेश और एक दिनाल से बने हुए। एक फिल्म सी जिसने काजोल नू बहुत वड्डा स्टार बना दिता। शाहरुख खान तो पहला ही स्टार सीगे ते इन्हां दी जोड़ी नू इस फिल्म तो बाद कुछ ज्यादा ही पहचान मिली सी। फिल्म का नाम है जी, उस विच शिल्पा शेट्टी भी सी। आ गई ना याद, बिल्कुल सही पहचान है। फिल्म का नाम है जी बाजीगर। इस फिल्म नू भी श्रीदेवी ने करती सी कोरी ना। इस फिल्म विच श्रीदेवी नू डबल रोल ऑफर होया सी, पर एक्ट्रेस ने मना कर दिता। फिर जदों उन्होंने मना कर दिता ना, तो बाद विच मेकर्स ने फिल्म की कहानी विच बदलाव ही लिया। देखो पर ये चीज तुसी समझो कि श्रीदेवी दी किड्डी तकड़ी इंपोर्टेंस सी ना, कि जिहड़ी फिल्म नू कईआं नू मना करदी सी तां उस दे विचों किरदार ही हटा दिता जांदा सी। बाजीगर दे विचों, मुहब्बत दे विचों। अगे भी मैं दसदी हां इस बारे, सबर रखो।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
3: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

हाँ जी रेग बफर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101 ते चार छे संदेश अलग दे नाल तुसी बने होए हो। अगली फिल्म जिहड़ी इस लिस्ट दे विच आउंदी हैगी है जिस नूं रिजेक्ट कीता सी श्रीदेवी ने ओ सी जी बहुत ही हिट सुपर डुपर हिट फिल्म बागवान। तो देखो अमिताभ बच्चन की इस फैमिली ड्रामा विच उन्हां दी ऑन स्क्रीन पत्नी का किरदार हेमा मालिनी ने निभाया हैगा। ये रोल पहला हेमा मालिनी नूं ऑफर नहीं होया सी, मतलब कि हेमा मालिनी पहली पसंद नहीं है अमिताभ बच्चन की इस अमिताभ बच्चन की इस फिल्म के लिए मेकर्स की। यह रोल पहला श्रीदेवी के हिस्से आया सी पर उन्होंने इस नूं रिजेक्ट कर दिता। रिजेक्ट होया तो फिर ये हेमा मालिनी कोल गया, नो डाउट हेमा मालिनी इस रोल बिल्कुल परफेक्ट लगी।

0: हां जी, तो एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसोनी 101 एम ते जी आर चे संदेश चालक दिनाल से बने हुए। करिश्मा कपूर, माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान की एक बहुत ही जबरदस्त सोहनी जही फिल्म सी, तो उस फिल्म का नाम है जी दिल तो पागल है। शाहरुख खान स्टारर मूवी हैगी है, बहुत ज्यादा पसंद भी की गई सी। इस विच पूजा किरदार हैगा जिहड़ा ओ श्रीदेवी नूं ऑफर होया सी। पूजा हुण तुसीं पहले सोचो सोचो सोचो कि पूजा किहड़ा किरदार सी। ओ श्रीदेवी नूं ऑफर होया सी तां श्रीदेवी ने मना कर दिता सी, तां इह रोल बाद विच किसे होर दे हिस्से आया सी। हुण तुहानूं पता लग गया ना कि पूजा किरदार किसदा सी। जी हां, पूजा किरदार निभाया सी माधुरी दीक्षित ने, पर इस दे लई पहला चुनिया गया सी श्रीदेवी नूं।
1: Burst in the music.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रह्मानी 101 एफएम जी आर जे संदेश अलग दिनां से बने हुए हैं। एक और शाहरुख खान की मूवी हैगी है जिहड़ी श्रीदेवी ने रिजेक्ट की थी, तो वह मूवी सी जी डर। डर दे विच पहली बार तो शाहरुख खान नैगेटिव रोल दे विच नजर आए सी। शाहरुख खान सनी देओल की फिल्म है डर, जूही चावला ने किरण का किरदार निभाया सी। बहुत घट लोग जानते हैं कि यह रोल पहला श्रीदेवी को ऑफर होया सी, पर श्रीदेवी ने इसनों मना करता सी, तां फिर रोल गया जूही चावला दे हिस्से। तां नो डाउट जूही चावला ने इसनों बहुत ही वधिया तरीके दे नाल निभाया है, पर मेकर्स की पहली पसंद श्रीदेवी थे। हुण इमेजिन करते हैं जो श्रीदेवी होंगी तो किस तरह की लगनी सी फिल्म।

हाँ जी, वेला तो हो चुका है, थोड़े तो इजाजत लैन का, थोड़ा टाटा बाय बाय कहण का। पर देखो हूँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक फिल्म थानू दसनी हैगी है जिहड़ी श्रीदेवी ने रिजेक्ट की थी। तो उस फिल्म जी बहुत ही खूबसूरत जी फिल्म बेटा। जी हाँ, इस मूवी दे लई मेकर्स दी पहली पसंद श्रीदेवी सी। श्रीदेवी ने जदों मना करता सी ना, तो बाद दे विच इस नू इस फिल्म दे विच माधुरी दीक्षित नू कास्ट कीता गया सी, ते उन्हां दे हिस्से चले गए। ते उन्हां दी जोड़ी अनिल कपूर दे नाल हिट भी साबित हुई, क्योंकि इस तो पहला तक तां अनिल कपूर दे नाल जोड़ी हैगी है जिहड़ी उह श्रीदेवी दी काफी ज्यादा पसंद कीती जांदी सीगी। ते देखो इह सारियां फिल्मां हैगियां ने जिहड़ियां श्रीदेवी ने रिजेक्ट करदियां। हुण तुसीं इंज करो कि दसो कि कहिड़ी फिल्म तुसीं चाहुंदे हो, या तुहानूं लगता है कि काश ये फिल्म दे विच श्रीदेवी नू कास्ट किया जाता तो यह फिल्म बहुत ज्यादा सोहनी होनी सी, है ना। दसो दसो फटाफट दे ना। रेडियो ब्रिसोनी 101.1 साडा फेसबुक पेज है जी, ब्रिसोनी @ब्रिसोनी.com साडी ईमेल आई डी जरिए जिहड़ा भी अपनाउणा होए अपनाओ, साडे नाल गल्लां बातां जरूर करते रहा करो, है ना। तो फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू करो। बाकी मैं तो यही कहने जी कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखो, कल मिलते हैं, करते मुलाकात, सत श्री अकाल।

0: शूटर कालो नू पहले गाने तो ही पहचान मिल गई सी, बच्चे बच्चे नू पता लग गया सी कि पंजाब विच कोई शूटर कालो नाम का भी बंदा है।
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
4: इट्स टाइम टू कंप्लीट योर सेंसस। ऑन ट्यूसडे 11th ऑफ ऑगस्ट 2026 Everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
3: Hi guys, I'm Madhvi for the Meat Brothers. Aap sun rahe hain Radio Briswani.
4: Hi, this is Salman Khan.
5: Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
6: Hi, this is Deepika Padukone. Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, main hoon Tulsi Kumar. Aur aap mujhe sun rahe hain Radio Briswani.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shah Rukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
11: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
12: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
13: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
12: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
13: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
12: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
13: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
14: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
15: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
2: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की इंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
4: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
6: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन. कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
5: अरे वाह, इनका पता बताना.
6: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: तुम जीत गए।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: मैया सुकू सुकू
1: आई आई या करूं मैं क्या सुकू सुकू आई आई

0: चलो जल्दी चलो, लेट हो गए। ले भाई चाबी।
1: सर ऑन स्टेज 5 मिनट्स।
0: ओके तुम आ रही हो?
1: मैं जा रहा हूं।
0: लगता है रूम में रह गई।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दो।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और सबसे पहले हाउ आर यू फीलिंग टुडे। जी हाँ, क्या है आज। वेल ऑफ कोर्स आज है थर्सडे। थर्सडे मतलब कि बस एक दिन बाद फिर से वीकेंड आ जाएगा। और थर्सडे जो है वो ऐसे ही अच्छी अच्छी जो है वो हवाएं हमारे लिए लेकर आता है। जैसे फ्राइडे होता है ना, और फ्राइडे जो है वो एकदम प्रो मैक्स लेवल पे अच्छी हवाएं हमारे लिए लेकर आता है। वो जो सुकून जो है वो लेकर आता है। लेकिन थर्सडे जो है वो सुकून की सुगबुगाहट जो है वो शुरू हो जाती है। सो आपको पता है कि थर्सडेज जो हैं वो भी हमारे लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे हमें फील होते हैं। मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद जो है हमें थर्सडे बुरा नहीं लगता। थर्सडे हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो वीकेंड ऑलमोस्ट आ ही जाएगा। सो वो जो सुगबुगाहट है ना वीकेंड की, वो आने की खुशी ही जो है वो थर्सडे को बहुत ही खास बना देती है। सो या थर्सडे है आज, और आइए प्रोग्राम की करते हैं शुरुआत। और आपको पता ही है वो कैसे होती है। वेल, प्रोग्राम की स्टार्टिंग में हम हमेशा एक हेल्दी रिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमें हेल्दी रखने में हेल्प करता है। एंड व्हेन आई से हेल्दी, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटली एंड ऑल्सो फिजिकली टू। सो मेंटली हेल्दी रखता है हमें, और मैं बात कर रही हूँ डीप ब्रेथ एक्सरसाइजेस की। तो सबसे पहले आइए वही करते हैं। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इसके साथ ऐसे ही अच्छा अच्छा फील करते करते अब सीधा चलते हैं प्रोग्राम की खूबसूरत सी शुरुआत करते हैं, और गाना एक बढ़िया सा आपके लिए प्ले करते हैं। जो गाना मैं प्ले करने वाली हूँ अभी आपके लिए, उसका नाम है इश्क बुलावा। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गाना है हंसी तो फंसी का। और इसी के साथ करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत, और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना कैसा ये इश्क है।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। तो अब जरा मौसम की बात कर ली जाए, क्योंकि मौसम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। भाई हमारी प्लानिंग होती है, और हमारी प्लानिंग को कहीं मौसम गड़बड़ तो नहीं करने वाला है, उसी के बारे में आपको बताने का वक्त हो गया है। तो सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। 21 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर अभी की बात की जाए तो 18.8 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको हो रहा है 17.1 डिग्री सेल्सियस के करीब। जी हाँ, और ये तो है दिन का टेम्परेचर। और रात की टेम्परेचर की बात की जाए तो 11 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप देख पाएंगे, जो कि कल और पिछले से पिछले कल के मुकाबले थोड़ा बेटर होने वाला है। बट बारिश जो है वो यहाँ पर भर भर के आपको देखने को मिल सकती है, और उसके लिए आप रेडी रहिए। जी हाँ, और बारिश जो है वो हो रही है, और 1 to 5 mm बारिश जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। एयर क्वालिटी है एकदम एक्सलेंट। जी हाँ, वहीं फ्राइडे की बात की जाए, सैटरडे की बात की जाए तो अगेन बारिश मुझे नजर आ रही है। कल 80% चांसेस है बारिश होने के विद 21 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर। वहीं अगर सैटरडे की बात की जाए तो 50% चांसेस है बारिश होने के विद 22 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर। तो ये तो है आज का और अगले 2 दिन के मौसम का हाल। अब ये हाल कहीं आपका हाल ना कर दे बेहाल, ये आपको खुद को देखना है। क्योंकि अगर बारिश आपको पसंद नहीं है और आप कहीं प्लान कर रहे हो जाने का एटलीस्ट सैटरडे को या कल, तो आपको थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। बाहर निकलने से पहले आपको छाते के बिना आप बाहर नहीं निकल सकते। रेनकोट या जो भी नेसेसिटी होती है, जो भी चीजें चाहिए होती हैं बारिश में, आपको उनके बिना आप नहीं निकल सकते हो। और अगेन बारिश है तो आपको ट्रैफिक भी चेक करके निकलना है, इनकेस आप कहीं ज्यादा देर ना फंस जाओ। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा आपकी फरमाइशों की तरफ, क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत हो गई और जैसा आप सुन पा रहे हैं गाने भी हमने एकदम मजेदार आपके लिए यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो अब जरा आपके गानों की बारी आ जाए। जी हाँ, और अगर आपको नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं बात कर रही हूँ आपके फेवरेट गानों की, आपके फरमाइश गानों की और आपके रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स की, जो कि आप किसी को डेडिकेट भी कर सकते हो। जी हाँ, सो बेसिकली अपना फेवरेट गाना आप प्ले करवा सकते हो इस प्रोग्राम इवनिंग वाइब में हमारे साथ। और अगर आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हो कोई गाना, उनको स्पेशल फील करवाना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। और मौका है आपके पास, जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल करना है आपको। नंबर है +9182888717701। आई रिपीट, +9182888717701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, कॉल व्हाट्सएप या मैसेज के थ्रू आप हम तक पहुंचा दीजिए अपनी फरमाइश या डेडिकेटेड सॉन्ग। और यहां पर हमारी तरफ से एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए, लाइक इट्स अ क्लासिक फेवरेट, सो आपको जरूर सुनना चाहिए।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने वाली हूँ। जी हाँ, एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर आप इतने ज्यादा मोटिवेट होने वाले हो, इतने ज्यादा इंस्पायर होने वाले हो कि आपको लगेगा इस दुनिया में कुछ भी अचीव करना मुश्किल नहीं है। मतलब कुछ भी अचीव करना मुश्किल नहीं है। जी हाँ, सो ये कहानी है मेसी की और स्पेन के बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी लामिन यमाल की। जी हाँ, अब ये कहानी शुरू होती है 19 साल पहले। जी हाँ, जब यूनिसेफ के एक फंड रेजिंग कैंपेन में मेसी एक बच्चे को नहलाते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, ये कैलेंडर के लिए, बार्सिलोना चैरिटी कैलेंडर के लिए वो पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे और ये यूनिसेफ का कैंपेन था। वहां पे और भी बच्चे थे और वहां पर एक बच्चे को नहलाते हैं यंग मेसी। जी हाँ, 19 साल पहले की बात है तो ऑफकोर्स मेसी भी यंग थे। अब 19 साल बाद ये व्यक्ति जिसको उन्होंने नहलाया था उसी यूनिसेफ के फंड रेजिंग कैंपेन में, वो उनके साथ कम्पीट करने वाला है, क्योंकि वो कोई और नहीं लामिन यमाल थे। जी हाँ, आपने सही सुना, लामिन यमाल ही वो बच्चे थे जिनको नहलाया था मेसी ने उस फंड रेजिंग इवेंट में। आप खुद सोचिए कि इट्स सच अ फुल सर्कल मोमेंट, राइट? मतलब उस बच्चे ने कभी सोचा भी नहीं होगा, और इनफैक्ट उस वक्त जिस वक्त मेसी ने उन्हें नहलाया था और जिस वक्त 19 साल पहले ये इवेंट हुआ था, तब लामिन यमाल बहुत ही छोटे थे। मतलब वो सोच समझ भी नहीं सकते थे, वो उतने छोटे थे। लेकिन लिटिल डिड ही नो कि 19 साल बाद इसी लेजेंड के साथ वो स्टेज शेयर करेंगे, वो मंच शेयर करेंगे, वो ग्राउंड शेयर करेंगे और वर्ल्ड कप के ट्रॉफी के लिए कम्पीट करेंगे। आई मीन इट इज सच अ इंस्पायरिंग मोमेंट। मतलब किसने सोचा होगा, राइट? किसी ने नहीं, मैंने नहीं सोचा था। और जब मैंने इस स्टोरी के बारे में पढ़ा, वाज लाइक कि ओके, आई नीड टू यू नो टेल दिस टू माय लिसनर्स, बिकॉज दिस स्टोरी इज सो सो सो इंस्पायरिंग। एंड यू नेवर नो आप किससे कब मिलने वाले हो फिर से। इट्स अ फुल सर्कल मोमेंट, राइट? सो या आई हैव टू से लामिन यमाल, यू हैव कम अ लॉन्ग वे। एंड मैं डेफिनेटली, और हम सब ये देखना चाहेंगे कि से आप उस स्टार खिलाड़ी के साथ मंच शेयर करते हो, उनके साथ कंपीट करते हो जिनसे आपने अपने आप को लिटरली नहलवाया था। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: And you're listening to Radio Briswani.
3: Hi guys, I'm Madhvi from the Meat Brothers. And you're listening to Radio Briswani.
4: Hi, this is Salman Khan. And
5: you're listening to Radio Briswani.
6: Hi, this is Deepika Padukone. And you're listening to Radio Briswani.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, I'm Tulsi Kumar. And you're listening to Radio Briswani.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shah Rukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan, और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
11: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
12: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
13: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
12: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
13: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
12: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
13: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
14: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
15: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
16: दोस्तों, इसी के साथ एक और मूवी रिकमेंडेशन अब मैं आपको देने वाली हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM और शो चल रहा है इवनिंग वाइब, ऑफ कोर्स आपकी होस्ट एंड दोस्त आर्जेनिविया के साथ। सो यहाँ पर जो मैं आपको रिकमेंडेशन देने वाली हूँ वो है शीप डिटेक्टिव। जी हाँ, द शीप डिटेक्टिव्स। और अब आप तो बोलो ठीक है, डिटेक्टिव्स शेरलॉक होम और इन सब के बारे में तो सुना है, लेकिन शीप डिटेक्टिव्स ये क्या है? वेल, अगर आप वुल्वरिन के फैन हैं और ह्यूग जैकमैन के फैन हैं तो आपके लिए ये और भी अच्छी मूवी हो सकती है, क्योंकि इसमें ह्यूग जैकमैन ही आपको नजर आने वाले हैं। सो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक व्यक्ति जो है जो डिटेक्टिव गिरी करता है और वो अपनी भेड़ों के सामने, उसके पास बहुत सारी भेड़ें हैं, शीप्स हैं, उनके सामने वो करता है। लिटिल डिड ही नो कि उसकी भेड़ें यानी कि उसकी शीप्स जो हैं वो सब कुछ अंडरस्टैंड कर रही है। मतलब बेसिकली वो आधी से ज्यादा डिटेक्टिव बन चुकी है। एकदम से बंदा गायब हो जाता है या उसको कुछ और हो जाता है, आई एम नॉट गोना स्पॉइल इट फॉर यू। मुझे लगता है मैंने काफी सारी स्टोरी आपको ऐसे ही बता दी है। सो उसके बाद वो शीप्स जो है वो अपनी डिटेक्टिव गिरी का इस्तेमाल करके उस बंदे को ढूंढती हैं या क्या करती हैं, दैट आई एम नॉट गोना टेल यू। बट वो डिटेक्टिव गिरी करती हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जब वो बंदा उनके सामने डिटेक्टिव गिरी करता था तो उन्होंने वो सब कुछ सीख लिया था। जी हाँ, आपने सही सुना, मूवी का नाम है द शीप डिटेक्टिव्स और ये रिलीज हो चुकी है। आप इसे अमेज़न प्राइम पे देख सकते हैं। और प्लीज आप मुझे बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी, बिकॉज आई परफेक्ट वीकेंड मूवी, गो फॉर इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगेगी। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब एक फरमाइशी गीत प्ले करने का वक्त हो गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कैसे आप अपने फेवरेट गाने फरमाइश कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, और यहाँ पर फरमाइशों का सिलसिला ऑफिशियली शुरू हो रहा है। पहली फरमाइश जो हम प्ले करने वाले हैं हमारे आज के प्रोग्राम में, वो आई है हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर अमला जी की तरफ से। गाने का नाम है हे सोना हे सोना। जी हाँ, आपको पता चल ही गया होगा कौन सा गाना है। वाली है तारा रंपम का, बहुत ही प्यारी मूवी है, बहुत ही क्यूट मूवी है, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर चेकआउट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच अमला जी, हमेशा की तरह खूबसूरत फरमाइशों के लिए, इंक्लूडिंग दिस वन। आई लाइक इट एंड आई थिंक वी ऑल लव इट, राइट? सो थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए हमारे इस प्रोग्राम को, और ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ. Quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck. और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
1: अरे वाह! इंटेलिजेंट हो गई हो.
2: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
4: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
6: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन. कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
5: अरे वाह, इनका पता बताना.
6: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
7: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरशे निविया के साथ. दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई कंट्री अपने सिविलियंस के लिए, अपने लोगों के लिए अच्छे इनिशिएटिव्स लेती है. जी हाँ, कुछ ऐसा करती है जो कि उनकी वेलबींग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उनकी सिक्योरिटी के लिए काफी अच्छे से काम कर सकता है. ऑफकोर्स ऐसी बहुत सारी कंट्रीज नहीं करती, लेकिन कुछ जो है इसमें काफी आगे बढ़ चढ़कर जो है वो काम कर रही है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट साउथ कोरिया. जी हाँ, सो साउथ कोरिया हैज डन समथिंग विच इज रियली रियली ग्रेट, एंड आई थिंक ऑल द अदर कंट्रीज शुड टेक नोट्स from South Korea on that. Why am I saying that? Well, South Korea ne ek app launch ki hai, aur ye koi normal ya private app nahi hai, balki ye ek government app hai, jo ki allow karti hai victims ko to see the real time location of high risk stalking suspects. Ji haan, आपने सही सुना. सो साउथ कोरिया ने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है जो कि विक्टिम्स को ये देखने में हेल्प करता है कि उनके जो स्टॉकर्स हैं, उनकी रियल टाइम लोकेशन क्या है, वो कहाँ है. इनफैक्ट अगर उनके जो स्टॉकर्स हैं वो उनके जहां पर वो हैं, उनके थोड़ा भी करीब तक पहुंचते हैं, तो वो डायरेक्टली अथॉरिटीज को कॉल कर देती है, डायरेक्टली वो पुलिस को कॉल कर देती है. इमरजेंसी कॉल्स जो है वो खुद ही वो ऐप मिला देती है, ताकि जो विक्टिम है, जो कि जो बंदा है, वो अपने आप को सेफ फील करवा सके. आई मीन इमेजिन, कौन सी कंट्री कर रही है ऐसा. सो साउथ कोरिया लिटरली नेल्ड दिस विद इट. जी हाँ, नेल्ड इट विद दिस. यहाँ पर ये ऐप की जरूरत जो है सिर्फ साउथ कोरिया को नहीं, हर एक कंट्री को है, बिकॉज देयर आर मेनी स्टॉकिंग इंसिडेंट्स जो कि लिटरली बाद में मर्डर्स में बदल जाते हैं या किसी ऐसे यू नो एक्सप्लॉयटेशन में चेंज हो जाते हैं जिसको जो है वो रोका जा सकता था. समटाइम्स जो है वो कोर्ट के ऑर्डर्स होने के बावजूद जो स्टॉकर्स हैं वो फिर भी अपना काम जो है कर जाते हैं. ऐसे में साउथ कोरिया ने मेक श्योर किया है कि ऐसा ना हो, एटलीस्ट उनकी कंट्री में. एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से हम सबको भी ये चीज जो है, हमारी गवर्नमेंट को भी जो है ये चीज देखनी चाहिए और ऐसा कुछ जो है वो बनाना चाहिए. और नॉट जस्ट ऑस्ट्रेलिया बल्कि जितनी भी और कंट्रीज है, फिर चाहे वो इंडिया हो, फिर चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो, सबको इससे सीखना चाहिए बिकॉज दिस ऐप कैन बी रियली रियली गुड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ सिविलियंस. जी हाँ, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

जी दोस्तों, और इसी के साथ अब सीधा चलते हैं खबरों की तरफ, रुख करते हैं खबरों का, दुनिया का क्या हो रहा है पॉलिटिकल वर्ल्ड में, वॉर फ्रंट पे। वी आर गोना टॉक अबाउट एवरीथिंग। सबसे पहले शुरुआत करते से हैं अमेरिका से। अमेरिका में धर्म पूछकर भारतीय पर हमला करने का आरोप, 15 बार चाकू से वार। जी हाँ, एक बहुत ही डिस्टर्बिंग खबर अमेरिका से आई है। अमेरिका के यूटा राज्य में एक भारतीय व्यक्ति पर कथित तौर पर उसके धर्म के कारण चाकू से हमला किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शख्स को करीब 15 बार चाकू मारा गया। ये घटना वेस्ट वैली सिटी स्थित वैली सिटी मॉल में सोमवार दोपहर को हुई। रिपोर्टों के मुताबिक मॉल में काम करने वाले भारतीय व्यक्ति सैयद सहलुद्दीन पर पीटर माइकल लॉर्सन ने कथित तौर पर हमला किया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अभियुक्त पर आरोप है कि हमले से पहले उसने शख्स से उसका धर्म पूछा था। पुलिस ने अभियुक्त पीटर माइकल लॉर्सन को हत्या के प्रयास और प्रतिबंधित खतरनाक हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एबीसी न्यूज के मुताबिक अदालत के रिकॉर्ड के हवाले से रिपोर्टों में कहा गया है कि अभियुक्त ने पुलिस को बताया कि उसने कर्मचारी को उसके धार्मिक विश्वासों के कारण निशाना बनाया। सहलुद्दीन को अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी सर्जरी हुई। वहीं कथित हमले को रोकने के लिए आसपास के लोगों ने हमलावर की पिटाई की, इसके बाद वो भी अस्पताल में भर्ती है। सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय कॉन्सुलेट जनरल ने यूटा में हुई इस घटना पर गहरा दुख जताया है। कॉन्सुलेट जनरल ने एक्स पोस्ट में कहा कि हम शख्स के दोस्तों और परिवार के संपर्क में हैं, हर संभव सहायता देने के लिए तैयार हैं, हम स्थानीय अधिकारियों से संपर्क में हैं और मामले पर करीबी नजर बनाए रखने के लिए भी एकदम तैयार हैं।

जी हाँ दोस्तों, वही अमेरिका ने ईरान पर फिर किए हमले। डोनाल्ड ट्रंप ने दी ये चेतावनी। अमेरिका ने बुधवार शाम ईरान पर नए हमले किए और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को चेतावनी दी कि वो बेहतर व्यवहार करे। अमेरिकी सटकॉम ने बताया कि उसने ईरान में अपने नए हमलों के दौरान सैन्य कमांड सेंटर, हवाई सुरक्षा ठिकानों, मिसाइल और ड्रोन से जुड़े ठिकानों और तटीय निगरानी केंद्रों को निशाना बनाया। सेना का कहना है कि ये हमले अब खत्म हो चुके हैं। अमेरिका के मुताबिक इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को खत्म करना है जिससे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों और उनके चालक दल को खतरा पहुंचा सकता है। यह तब हुआ जब ईरान ने दावा किया कि उसने क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया है जिनमें बहरीन और कुवैत भी शामिल है। ईरान के मुख्य वार्ताकार और संसद के स्पीकर मोहम्मद बगर गलीवाफ ने सरकारी मीडिया से कहा कि अगर समझौते से कोई फायदा नहीं है तो ईरान के पास उसे मानने का कोई कारण नहीं है। ट्रंप ने मंगलवार देर रात धमकी दी थी कि अगर ईरान अगले हफ्ते वार्ता में वापस नहीं आता तो पुलों और बिजली घरों पर हमला किया जाएगा। बुधवार देर रात जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वो इसके लिए कोई समय सीमा देंगे तो उन्होंने कहा, मुझे समय सीमा देना पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें पता है उन्हें बेहतर व्यवहार करना चाहिए। ट्रंप ने कहा, वे ईरान समझौता करना चाहते हैं, उन्हें हमारा तरीका पसंद नहीं है। अब हम तय करेंगे कि उनके साथ समझौता करना भी है या नहीं।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सॉर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउन लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत। Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
4: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert. Performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane. LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert. Performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
5: तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन के गलत तरीके से हिरासत में लिया गया। Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
6: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
7: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
6: अच्छा, वो क्या?
7: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
6: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
7: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
8: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले

जी दोस्तों, आरसी के साथ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द मैच व्हिच हैपेंड यस्टरडे, या फिर कहें यस्टरडे के मुकाबले आज ही सुबह सुबह। जी हाँ, और ये मैच मैं बात कर रही हूँ ऑफ कोर्स अर्जेंटीना और इंग्लैंड का। सो इंग्लैंड का हाल भी वही हुआ है जो कि इजिप्ट का हुआ है। सो अर्जेंटीना ने इजिप्ट को जैसे हराया वैसे ही इंग्लैंड को भी हराया। ऑल्दो इजिप्ट के साथ तो पार्शियलिटी हुई है, उनके साथ बेचारों के साथ बहुत गड़बड़ हुई है, लेकिन इंग्लैंड के साथ इतनी गड़बड़ नहीं हुई। लेकिन यहां पर भी इंग्लैंड जो है वो आगे चल रहा था और फिर एकदम से कहीं से सब खतरनाक हो जाता है। अर्जेंटीना उस पूरी की पूरी बाजी को पलट कर रख देता है। जी हाँ, और वो दो गोल स्कोर कर लेता है। कैन यू इमेजिन। जी हाँ, सो नाउ इट्स अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन बिकॉज दे आर गना प्ले एंड दे आर गना कम्पीट फॉर द ट्रॉफी एंड आई एम एक्साइटेड फॉर इट। जी हाँ, आई डोंट नो बट आई थिंक आई एम सपोर्टिंग स्पेन इन दैट। जी हाँ, आप मुझे बताइए आप किसको कर रहे हो। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि पहले तो नहीं हुआ, तुमने अर्जेंटीना लगाया हुआ था, बट देन नाउ आई थिंक कि अर्जेंटीना को लिटरली फीफा भी जिताने की कोशिश कर रहा है। सो आई थिंक मुझे बाकी टीम्स को सपोर्ट करना चाहिए, दैट्स वाई आई हैव चेंज माई स्टांस। बट यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ। एंड यहाँ पर एक और मैच जो है वो होने वाला है जो कि डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम थर्ड होने वाली है और कौन सी टीम फोर्थ होने वाली है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड एंड फ्रांस। सो इंग्लैंड एंड फ्रांस जो है वो फिर से कम्पीट करेंगे यहाँ पर और फिर वो डिसाइड करेंगे कि क्या कौन सी टीम जो है वो तीसरी और चौथी होने वाली है। आप लोग बोलोगे कि हु केयर्स अबाउट दैट मैच। वेल ऑफ कोर्स या दैट्स ट्रू, बट या दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन फीफा वर्ल्ड कप। एंड 19 को ये मैच होने वाला है एंड क्या क्या इस मैच में होगा, वेल आई डोंट नो। बट फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी कौन उठाएगा, वेल लेट्स सी। मे द बेस्ट टीम विन, दैट्स ऑल आई वांट टू से। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: ਵੈਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
2: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
1: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
3: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: 2602 or email me at royalindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. जी हाँ दोस्तों, अब मैं एक और बहुत ही दिलचस्प इंटरव्यू के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ. और ये दिलचस्प इंटरव्यू हुआ एक बहुत ही बड़े फिल्म मेकर का, और मैं बात कर रही हूँ क्रिस्टोफर नॉलन, क्योंकि वो लिटरली सुर्खियों में बने हुए हैं आजकल. उनकी मूवी द ओडिसी इज अराउंड द कॉर्नर, इट्स रिलीजिंग दिस वीकेंड एंड आई एम क्वाइट इंट्रीग्ड बाय द यू नो वेरी फैक्ट ऑफ इट, सो वेरी आइडिया ऑफ इट. बट द थिंग आई एम गोना टॉक अबाउट राइट नाउ इज क्रिस्टोफर नॉलन, नॉट हिज मूवी द ओडिसी, बिकॉज उसके बारे में हम काफी बात करते हैं. क्रिस्टोफर नॉलन, जी हाँ, उनसे एक इंटरव्यू में जब होस्ट ने पूछा, इंटरव्यूअर ने पूछा कि हमने सुना है कि आप ईमेल्स नहीं करते, क्या यह बात सच है? क्रिस्टोफर नॉलन बोलते हैं कि आपने सही सुना है, मैं ईमेल्स नहीं करता. तो इंटरव्यूअर उनसे पूछता है कि अगर आप ईमेल्स नहीं करते, डिजिटल ईमेल्स नहीं करते, तो क्या आपको लेटर्स आते हैं क्या आज भी, पोस्टल लेटर्स? तो क्रिस्टोफर नॉलन बोलते हैं कि हाँ, आप कह सकते हो कि मुझे लेटर्स आते हैं, मुझे प्रिंटेड ईमेल्स जो हैं वो आती हैं और बाय पोस्टल आती हैं. तो वो इंटरव्यूअर कहता है कि आई डोंट नो व्हाट टू से टू दैट, बट क्या ये दुनिया को अपने आप को परेशान ना करने देने का एक तरीका है? दुनिया को अपने आप को परेशान करने का, ना परेशान करने देने का एक तरीका है? तो क्रिस्टोफर नॉलन कहते हैं कि हाँ, आप कह सकते हो ऐसा, बट अगेन मैं यही कहूंगा कि मैं नहीं चाहता. आई डिड नॉट वॉन्टेड टू वेयर दीज डिजिटल शैकल्स एंड दैट्स वाई आई डिड इट. यू नो द वर्ड, द टर्म दैट ही यूज्ड, डिजिटल शैकल्स, एंड दैट टॉट मी सो मच. यू नो आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट एंड आई वॉज लाइक, या दिस मैन इज टेलिंग अ ट्रूथ राइट हियर. मतलब हम लोग डिजिटल शैकल्स पहने हुए हैं एंड हमें पता भी नहीं है, हमें बिल्कुल भी पता नहीं है. मतलब वो बंदा, उस बंदे के पास आज भी स्मार्टफोन नहीं है. मतलब आप सोचिए, वो ईमेल्स नहीं करते, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो एक नॉर्मल सा फोन रखते हैं, एक फ्लिप फोन जिसमें कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ कॉलिंग होती है, सिर्फ कॉल होती है. जी हाँ, क्रिस्टोफर नॉलन, द वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म मेकर आउट देयर, डज नॉट हैव स्मार्टफोन. वाई? बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट इट. जी हाँ, सो इट इज यू नो अप टू अस. अगेन, इससे हमें एक ही चीज पता चलती है कि अगर हम पुराने तरीके से रहने की कोशिश करेंगे, खुश रहने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम रह सकते हैं. क्योंकि इफ क्रिस्टोफर नॉलन कैन डू इट, वी कैन ऑल्सो. ऑफकोर्स उन्होंने कभी अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया उस चीज से. उन्होंने हमेशा से ये तय कर लिया कि मुझे नहीं स्मार्टफोन चलाना, मुझे नहीं ये डिजिटल ईमेल्स करनी. जैसे पहले होता आया है वैसे ही मैं रहना चाहता हूँ. एंड द वर्ड ही यूज, द टर्म ही यूज इज डिजिटल शैकल्स. आई थिंक वी नीड टू रिमेम्बर दिस टर्म एंड कैसे. It's not a good term. It's a bad term in a way. We need to remember that. And iska matlab bhi hame yaad rakhna hai. Ji haan. Again, Christopher Nolan jaisa storyteller, matlab kya movies banata hai. I think apne aap ko uncorrupted rakhna bahut zyada zaruri hota hai aisi movies banane ke liye. Aur uske liye apni puri ye digital jo pura duniya hai, isse apne aap ko dur rakhna. Kya khoobsurat tarika hai, right? What do you think about it? Zarur mujhe batayega. And I'm gonna play a very good song for you. जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, और इसका नाम है इशारों इशारों में दिल लेने वालों.

जी हाँ दोस्तों, अगर आइंस्टाइन, न्यूटन और ये बड़े बड़े साइंटिस्ट और जिन्होंने हमें क्या क्या रचनाएं दी हैं, अगर उनका सामना आज के बच्चों से होता तो वो भी अपना सर पकड़ के वहां से भाग जाते, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है वो उनको आउटस्मार्ट कर चुके हैं। मतलब कौन आइंस्टाइन, कौन एंडरसन, कौन है ये सब? हमारे आज के जो बच्चे हैं वो सबसे खतरनाक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? वेल, एक टीचर स्टूडेंट्स को कहता है और एक स्टूडेंट को कहता है, देयर इज नथिंग द ह्यूमन ब्रेन कांट इमेजिन। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, एक टीचर कहता है अपने स्टूडेंट को, देयर इज नथिंग द ह्यूमन ब्रेन कांट इमेजिन। तो सामने से स्टूडेंट कहता है, ओके रियली, देन इमेजिन अ न्यू कलर। जी हाँ, वो कहता है देन इमेजिन अ न्यू कलर टू हिज टीचर। अब वहां पर ये सुनकर टीचर कहता है कि अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि ये जो बच्चा है जिसको मैंने ये एक जिंदगी का, यूनिवर्स का सच समझाने की कोशिश की, इसने मुझे ये सच सिखा दिया। जी हाँ, आजकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत खतरनाक है, बच्चे जो है वो बहुत खतरनाक है। सो कभी भी आप उनको कुछ पढ़ाने की कोशिश करेंगे ना, पहले तो सारी की सारी किताबें और गूगल सब कुछ साथ में खोल के रखिएगा, क्योंकि आपका सर चकराने वाला है। वो ऐसा क्वेश्चन आपसे कर देंगे कि आपको लगेगा आइंस्टीन, अरे कौन चाचा थे आइंस्टीन भी फेल हो जाएगा इन बच्चों के सामने। जी हाँ, मतलब टीचर को बोल रहा है कि अच्छा कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, तो इमेजिन करो कोई नया कलर और फिर हमको बताओ वो कैसा होता है। वेल, टीचर्स भी खतरनाक पर स्टूडेंट लाजवाब। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट, हाँ मुझे सिर्फ फेवरेट सेगमेंट बोलने की जरूरत है, बाकी तो आप खुद ही समझदार हो, समझ जाते हो। लेकिन हाँ, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो उसका एक ही रीजन हो सकता है कि आप हमारे नए लिसनर हो। तो चलो, अगर आप हमारे नए लिसनर हो तो आपको मैं बता दूं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और ऐसा कौन सा सेगमेंट है जिसकी हम इतनी तारीफ कर रहे हैं, मतलब वो मेरे दिल के करीब है, नॉट जस्ट मेरे बल्कि मेरे लिसनर्स के, हम सबका फेवरेट सेगमेंट है, क्योंकि हम इसमें पुराने गाने प्ले करते हैं आपके लिए और पूरी तरह से वो पुरानी महफिल को यहां पर सजा देते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आपके पास भी इस महफिल में चार चांद लगाने के लिए कोई पीस, म्यूजिकल पीस पड़ा है, कोई खूबसूरत सा गाना पड़ा है, तो जल्दी से उसे हमारे पास भेज दीजिए यहां पर, क्योंकि अभी पुराने गाने प्ले करने का सबसे अच्छा वक्त है और प्ले करवाने का भी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से आ जाइए यहां पर। जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ सबसे पहला, और वो गाना है कहीं दूर जब दिन ढल जाए। जी हाँ, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना है एंड इट्स अ कल्ट फेवरेट। सो ऑफ कोर्स इसी से शुरुआत करेंगे और फिर करेंगे और बहुत सारी बातें।

कभी आपने सोचा है कि कपूर खानदान ने हमेशा से फिल्म इंडस्ट्री पर राज क्यों किया? वेल ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ देयर क्राफ्ट, बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट, बट बिकॉज ऑफ देयर ग्राउंडनेस ऑल्सो. जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा इसका क्या मतलब हुआ? वेल, हमेशा से कपूर खानदान के बच्चों ने और जो एक्टर्स हुए बड़े बड़े जब वो बच्चे थे, उनको यही सिखाया गया कि आपको बहुत नीचे से शुरुआत करनी पड़ेगी और उसके अलावा देयर इज नो अदर वे. जी हाँ, पृथ्वीराज कपूर के बेटे शशि कपूर को शुरुआत करनी थी तो वो थिएटर में जाकर एक जूनियर आर्टिस्ट के द्वारा जो है की तरह उन्होंने काम करना शुरू किया और फिर उसके बाद जो है वो धीरे धीरे धीरे आके उन्होंने एक्टिंग फील्ड में जो है वो एंट्री मारी और उसके बाद वो बड़े स्टार बने. लेकिन किसी ने उन्हें ये नहीं कहा कि हम तुम्हें फिल्म बना के देते हैं, तुम्हें परोस कर सारा खाना जो है वो दिया जाएगा और तुम्हें सिर्फ खाना है. ऐसा किसी ने नहीं कहा, ना पृथ्वीराज कपूर ने, ना राज कपूर ने और ना आगे किसी ने. जी हाँ, करिश्मा कपूर एक बार एक शो के दौरान ये किस्सा सुनाती है कि कैसे राजेंद्र कुमार और मेरे दादाजी राज कपूर एक फिल्म कर रहे थे और मेरे पापा यानी कि रणधीर कपूर उस वक्त कुछ 17-18 साल के होंगे और वो उस पिक्चर के असिस्टेंट बनना चाहते थे. वो असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो बनना चाहते थे. अब यहां पर राज कपूर ने कह दिया कि ठीक है, अगर तुमको असिस्टेंट बनना है तो सबसे पहले तुमको और भी नीचे से शुरुआत करनी पड़ेगी, तुम्हें देखना पड़ेगा सेट पे चल क्या रहा है. और वो काम जो राज कपूर ने उन्हें करने के लिए कहा, अपने बेटे रणधीर कपूर को करने के लिए कहा 17-18 साल की उम्र में, क्या आप गेस कर सकते हो वो क्या था? वो था राजेंद्र कुमार के जूते साफ करना. आप लोग बोलो कि लाइक वी कांट बिलीव दिस, इतना बड़ा स्टार अपने बच्चों से ये क्यों करवाएगा? मतलब ही कुड हैव डन समथिंग एल्स, राइट? मतलब वो थोड़ा अच्छे से और काम भी उनको दिलवा सकते थे. वाई ही वॉन्टेड हिम टू स्टार्ट बाय पॉलिशिंग द शूज ऑफ राजेंद्र कुमार बिकॉज ही वॉज राज कपूर एंड ही न्यू कि अगर आपको किसी क्राफ्ट में घुसना है तो आपको उस क्राफ्ट के बहुत ही बेसिक से शुरुआत जो है वो करनी है. वो चाहते थे रणधीर कपूर अगर डायरेक्टर बनना चाहते हैं और अभी वो असिस्टेंट के तौर पर यहाँ पर आना चाहते थे इस फिल्म के सेट पर, तो उन्हें सबसे पहले काम जो करना है वो सेट पे नजर बनाए रखनी है और सेट पे क्या चल रहा है और सबसे पहले उन्हें राजेंद्र कुमार के जूते साफ करने हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि सबसे पहले ग्राउंडेड रहना है, उसके बाद जो है वो सक्सेस मिलेगा. क्या बात है. यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 AM शो, चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे दिव्या के साथ। दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, जब भी मैं ये पुराने गाने प्ले करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि क्या बाकमाल काम जो है वो किया गया है, राइट। मतलब आज मैं सुन रही थी और ये गाना जो है वो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स में से है, ना सिर्फ मेरा बल्कि जब हम बात करते हैं ना कि कॉम्पोजिशन कितनी खूबसूरत हो सकती है किसी गाने की, जी हाँ, तो ये कॉम्पोजिशन जो है वो आज भी इट स्टैंड्स टॉल, जी हाँ। और ये गाना जो है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो मैं बात कर रही हूँ ए दिले नादान की, जी हाँ, ए दिले नादान। अब इसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। जब इसके बोल लिखे जा रहे थे तो ऐसा कहा जाता है कि जानिसार अख्तर जो कि इसके बोल लिख रहे थे, उन्होंने इसके लिए बहुत सारे खूबसूरत लफ्ज लिखे, जी हाँ, बहुत सारे खूबसूरत लफ्ज लिखे। मतलब आप कह सकते हो कि 700 से ज्यादा लाइन्स जो हैं वो इसके लिए लिखी गई, इस गाने के लिए, स्पेशली इस गाने के लिए। और फिर उसके बाद जो है वो चयन किया गया इन कुछ लिरिक्स का, जी हाँ। जैसे मैंने आपको कहा कि जानिसार अख्तर ने इसे लिखा था और क्या बाकमाल जो है वो लिखा था। और जैसे मैंने कहा कि बहुत ही खूबसूरती से इतने सारे शब्दों के बीच में कुछ चंद शब्दों को जो है वो चुना गया, और फिर उसके बाद इसका जो म्यूजिक बनाया गया, जी हाँ, वो खय्यम ने बनाया। अब मैं इससे पहले खय्यम को नहीं जानती थी जब मैंने सबसे पहले ये गाना सुना, क्योंकि मैंने इस गाने की ट्यून सुनी थी एंड मैं ट्यूनिंग सुनते ही इस गाने की इतनी दीवानी बन गई। मुझे ऐसा लगा कि क्या बाकमाल, मतलब क्या एल्यूरिंग म्यूजिक है ये, क्या मतलब क्या बना दिया है, क्या धुन है ये, मतलब एक ऐसी धुन जो आपके दिमाग में रच जाती है, बस जाती है, आपके दिल में घर कर जाती है वैसे भी। फिर मैंने इसके पीछे की कहानी पढ़ी, क्योंकि गाना वैसे बहुत ज़्यादा स्लो है लेकिन इसकी खूबसूरती आज भी इसको कोई छेड़ नहीं सकता। रजिया सुल्तान का ये गाना ए दिले नादान, जिसको फिल्माया गया है हेमा मालिनी पे, जहाँ पे वो रेगिस्तान में एकदम खूबसूरत से गुलाबी लिबास में लिपटी हुई वहाँ पर रेत में लेटी हुई नजर आ रही है। इसको फिल्माने का तरीका भी जो है वो बहुत ही गजब का था, और ऑफकोर्स इसे जो बनाया गया वो तो लाजवाब था। और लता जी की गायकी उसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, बट आई थिंक फॉर मी द मेन थिंग वॉज द म्यूजिक, द धुन जो खय्यम ने बनाई है। यू टेल मी अबाउट द फेवरेट पार्ट ऑफ दिस म्यूजिक। अगर आपको भी ए दिले नादान पसंद है, आपको भी ये धुन पसंद है, तो मैं आपको बता दूं कि ये खूबसूरत धुन खय्यम नाम के एक बहुत ही बेमिसाल म्यूजिक डायरेक्टर ने बनाई है।

जी हाँ दोस्तों, मैंने तो कहा ही है ये गाना आप जितनी बार सुनोगे इसके दीवाने बन जाओगे, आप हर बार इसकी तारीफ में नए शब्द बयां कर जाओगे, ये गाना ऐसा है। चलिए इसी के साथ, आपने रजिया सुल्तान देखी है या नहीं देखी है जरूर बताइएगा। और अब आपसे विदा लेने का वक्त हो रहा है क्योंकि घड़ी ने कर दिया है इशारा और अब होगा मुझे जाना। बट डोंट वरी, कल होगा डेफिनेटली मेरा आना और हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं, सुनाने वाले हैं और जबरदस्त आपसे गपशप करने वाले हैं। आज आप मजे कीजिए, फन कीजिए। कल फ्राइडे का प्रोग्राम होगा तो फ्राइडे तो वैसे ही मजेदार होता है, आपको पता है। कल तो हम मस्ती से मिलेंगे, खुश होकर मिलेंगे। आप लोग बोलोगे ऐसे थोड़ी दुखी होकर मिलते हैं, ऐसे भी तो खुश होकर मिलते हैं, पर चलिए कल वाली खुशी डिफरेंट होती है। सो या मिलते हैं कल, बाय, सी यू, टाटा। और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से एक और गजब का गाना।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूंगा।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: Adam. I am your only Adam.
1: Fire ants तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। जी हाँ, सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन का मौसम आज हल्की बारिश और ठंड का माहौल। जी हाँ, ब्रिस्बेन के आज का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिन भर हल्की बारिश और ठंडी हवाएं भी चलती रही, इसलिए अगर आप घर से बाहर निकले हो तो आई होप आप छाते के बिना बिल्कुल नहीं निकले। इसी के साथ ई स्कूटर और ई स्केटबोर्ड क्रैश में एक की मौत, नियमों में बदलाव। जी हाँ, क्वींसलैंड से एक बेहद दुखद खबर आई है। कल रात ब्रिस्बेन से करीब 240 किलोमीटर दूर उरंगन में एक ई स्कूटर और इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 39 यानी कि 39 साल के एक व्यक्ति के मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद क्वींसलैंड सरकार ने ई मोबिलिटी डिवाइसों को लेकर नए नियम और सख्त कर दिए हैं। इसी के साथ ब्रिस्बेन रोवर का नया सीजन शेड्यूल जारी। जी हां, ब्रिस्बेन के फुटबॉल फैंस के लिए एक बड़ी खबर है। ब्रिस्बेन रोवर ने 2026 और 27 इसुजू यूटीई ए लीग मेन सीजन के लिए अपने मैचों का पूरा ड्रॉ कंफर्म कर दिया है। टीम अपने अभियान की शुरुआत 18 अक्टूबर को एडिलेड यूनाइटेड के खिलाफ अवे मैच में से करेगी। इसके बाद 23 अक्टूबर को सनकॉप स्टेडियम में पर्थ ग्लोरी के खिलाफ पहला होम मैच खेला जाएगा। वहीं सेफ नाइट पेट्रोलिंग में भारी मात्रा में हथियार जब्त। जी हां, नॉर्थ ब्रिस्बेन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एक बड़े प्रोएक्टिव एक्शन के तहत सेफ नाइट प्रिसिंक्ट SNP में चेकिंग के दौरान कई अवैध हथियार और चाकू जब्त किए हैं। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि इस पब्लिक स्पेस में हथियार लाना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं साउथ नानेंगू हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। ब्रिस्बेन के पास ही डी एंगुलर हाईवे पर दोपहर एक सिंगल व्हीकल क्रैश की घटना सामने आई है। 60 की उम्र के एक बुजुर्ग व्यक्ति गाड़ी चलाते समय अचानक मेडिकल इमरजेंसी का शिकार हो गए, जिससे गाड़ी बेकाबू होकर टकरा गई। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने AI डेटा सेंटर्स के लिए जारी की नई गाइडलाइंस। बढ़ते डिजिटल एरा को देखते हुए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने AI डेटा सेंटर्स के लिए नए सेफ्टी गाइडलाइंस और रेगुलेशंस तय किए हैं। इसका मकसद डेटा प्राइवेसी को मजबूत करना और बिजली पानी की भारी खपत को कंट्रोल करना है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले सोने के दामों में भारी गिरावट। सबसे पहले बात करते हैं आपके बजट की। जी हां, आज भारतीय सर्राफा बाजार में सोने के दामों में एक बहुत बड़ा क्रैश देखा गया है। 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 100 ग्राम सीधे 2800 रुपए तक गिर गई, जिससे अब 10 ग्राम सोने का भाव 1,43,290 रुपए के आसपास हो गया है। वहीं डीजल और ATF पर बढ़ा विंडफॉल टैक्स। सरकार ने आज यानी 16 जुलाई से डीजल और हवाई ईंधन ATF के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है। मिडल ईस्ट में चल रहे तनाव के चलते डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी अब 8.5% रुपए से बढ़ाकर 15.5 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। वहीं इंडिया UK हिस्टोरिक ट्रेड डील हुई लागू। जी हाँ, भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ ऐतिहासिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट, जिसे CETA भी कहा गया है, कल रात से पूरी तरह लागू हो गया है। इसे भारत के किसी विकसित देश के साथ अब तक की सबसे बड़ी और गोल्ड स्टैंडर्ड डील कहा जा रहा है। वहीं डिजिटल इंडिया का नया माइलस्टोन AI ट्रेनिंग प्रोग्राम। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने देश के छोटे शहरों और गांवों में युवाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देने के लिए एक बड़े नेशनल प्रोजेक्ट की घोषणा की है। इस प्रोग्राम का मकसद अगले 2 सालों में करीब 5 लाख छात्रों को बेसिक कोडिंग और AI टूल्स की ट्रेनिंग देना है। वहीं मॉनसून का अपडेट। उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने आज उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ा तनाव, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एयर स्ट्राइक। ग्लोबल फ्रंट से इस वक्त की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा विवाद अब जंग में बदल चुका है। आज अमेरिकी सेना ने ईरान के कई मिलिट्री ठिकानों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास मिसाइल साइट्स पर भीषण एयर स्ट्राइक की है। वहीं रूस का कीव पर बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल हमला। यूक्रेन की राजधानी कीव आज सुबह एक बार फिर दहल उठी। रूस ने कीव पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिसमें दो लोगों की मौत की खबर है। वहीं फ्रांस में इच्छा मृत्यु कानून को मंजूरी। यूरोप से एक बड़ा सामाजिक और कानूनी बदलाव सामने आया है। फ्रांस की संसद ने लंबे विवाद और बहस के बाद आखिरकार असिस्टेड डाइंग यानी इच्छा मृत्यु से जुड़े ऐतिहासिक कानून को मंजूरी दे दी है। वहीं ब्राजीलियन इंपोर्ट पर अमेरिका ने लगाया 25% टैरिफ। जी हां, अमेरिका ने अपने घरेलू इंडस्ट्री को बचाने के लिए ट्रेड वॉर की तरफ एक और कदम बढ़ाया है। अमेरिकी प्रशासन ने ब्राजील से आने वाले कुछ चुनिंदा सामानों, खासकर स्टील और कृषि उत्पादों पर 25% का भारी इम्पोर्ट टैरिफ लगा दिया है। इसी के साथ ग्लोबल पोल, चीन की लोकप्रियता में इजाफा। एक नए इंटरनेशनल सर्वे और पोल की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कई विकासशील देशों में अब अमेरिका के मुकाबले चीन की लोकप्रियता और फेवरेबिलिटी रेटिंग काफी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं हांगकांग में सुरक्षा कानून के तहत नई गिरफ्तारियां। हांगकांग में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत पुलिस ने एक नया स्वीप ऑपरेशन चलाया, जिसमें कई मशहूर बुकसेलर्स और पब्लिशर्स को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप 2026 अर्जेंटीना और स्पेन के बीच होगा महामुकाबला। स्पोर्ट्स वर्ल्ड से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर यही है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल लाइन अब पूरी तरह तय हो चुका है। कल रात अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। वहीं क्रिकेट की बात करें तो भारत ने इंग्लैंड को पहले वनडे में 6 विकेट से रौंदा। जी हां, मेंस क्रिकेट की बात करें तो भारतीय टीम ने इंग्लैंड दौरे की धमाकेदार शुरुआत की है। बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेले गए पहले वनडे मैच में टीम इंडिया ने मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। वहीं इतिहास रच दिया भारतीय महिला क्रिकेट टीम की लॉर्ड्स पर ऐतिहासिक जीत। लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान से भारतीय क्रिकेट के लिए एक बेहद गर्व का पल आया है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को उनके ही घर में इकलौती टेस्ट मैच में 270 रनों के विशाल अंतर से हरा दिया है। वहीं बॉक्सिंग की बात करें तो एशियन अंडर 19 और अंडर 23 में भारतीय बेटियों का जलवा। जी हां, जकार्ता में चल रही एशियन अंडर 19 गेम्स और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने रिंग में अपना दबदबा साबित कर दिया है। इसी के साथ टेनिस, जैनिक सिनर ने दोबारा जीता विंबलडन का खिताब। जी हां, टेनिस कोर्ट से भी खबर है कि इटली के स्टार खिलाड़ी और टॉप सीड जैनिक सिनर ने अपना विंबलडन मेंस सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूं। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands, that the number you carry is a statement of who you are. Q-Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
4: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
5: It's time to complete
4: ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਵੈਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟ ਵਿਲੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਫਾਰ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
5: ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਯੋਰ ਸੈਂਸਸ ਔਨ ਟਿਊਜ਼ਡੇ 11th ਆਫ

0: the form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
2: तो ओमसॉक से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल. खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई. ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी.
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में. फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद. कॉल नाउ ऑन 04111270035. रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर. फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003.

ना बदला में, ना बदला।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvit from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
10: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां की उपलब्धता नाल हुंदी है. इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके. अ प्लेस टू कॉल होम खोजो. क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
2: अरे वाह, इनका पता बताना.
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी। तुसी बने हुए हो जी थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्टोनी 101.9 ते जी आप चे संदेश शलक दिनाल से बन चुके हो। ढेर सारिया गल्लां करन दा साडा बहुत सोहना जवड़ा शुरू हो चुका है जी ते इन्हां गल्लां नूं असीं लगाउणा पंजाबी गीतां दा तड़का। तुसी की खाणा है तुसी जुड़ना है साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो ब्रिस्टोनी 101.9 साडा फेसबुक पेज है जी ते ब्रिस्टोनी@ब्रिस्टोनी.com साडी ईमेल आई डी है जरिए जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा है तुसी अपना पर साडे नाल गल्लां बातां देखो जरूर जरूर करते रहा करो है ना। तां फटाफट जुड़ना शुरू कर दो फटाफट दे नाल ते मैं बस सुने वापस सुननी हाँ थोड़ा कला कि दिन छड़ के जाना एक गीत थोड़ा सुना नहीं हैगी मैं तुम इन्होंने गीतों को इंजॉय करो मैं हमने वापस आई।
1: एक्सक्यूज मी सर, सर एक प्रॉब्लम हो गई।
2: क्या
1: मॉडल नहीं आ रही?
2: क्यों
1: सर आपकी मोबाइल पर उनका फोन आया था कि वो नहीं आएगी?
2: ला फोन दे।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101.4 संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो बॉलीवुड दे विच ना एक अदाकारा अजही है कि है जिसनू कदे कोई भुल ही नहीं सकता। बेशक वह अज साडे विचकार नहीं है पर हमेशा जो भी स्क्रीन पर आती है ना तो पुरानियां यादा ताजियां कर देती है। नाम है श्रीदेवी। श्रीदेवी ने ना बहुत छोटी उम्र विच एक्टिंग दी दुनिया विच कदम रख लिया सी। अपने करियर के दौरान श्रीदेवी ने सदमा, नगीना, चांदनी, इंग्लिश विंग्लिश, मिस्टर इंडिया, चा जुदाई, चालबाज वर्गियां कई यादगार फिल्मां कीतियां जिन्हां तों उन्हां नूं वक्री पहचान मिली। तो मैं सोचा कि अज श्रीदेवी दियां कुछ फिल्मां बारे गल करिए, पर उन्हां फिल्मां बारे नहीं जिन्हां दे करके वह फेमस हुई, क्योंकि वह फिल्मां तो सब नूं पता ही है कि जुबान ते रहिंदियां ने ना, जिवें मिस्टर इंडिया हो गई, चालबाज हो गई, इन्हां नूं किवें भुल सकदा कोई। हाँ, उन्हां फिल्मां बारे गल करदे आं जिन्हां नूं श्रीदेवी ने रिजैक्ट कर दिता सीगा। दस दो, तुसीं हैरान रह जाओगे जे तुसीं उन्हां फिल्मां बारे जाणोगे। तां करदियां थोनों हैरान, पर पहला सुनो एक गीत।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
2: Y'all really got it f***ed up right now.

जी देखो फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101.1 FM ते जी आर चे संदेश अलग दे नाल से बने हुए हो। अमिताभ बच्चन दे नाल श्रीदेवी ने बहुत सारियां फिल्मां कीतियां। देखो सवाल थोड़े लिए फिर मैं यही छड़ दिनी हां कि तुसी दसो कि अमिताभ बच्चन दे नाल केड़ियां केड़ियां फिल्मां हैगियां ने जिहड़ियां उह श्रीदेवी ने कीतियां या केड़ी सब तो ज्यादा हिट रही है, दसो दसो तुसी जवाब दिओ। रेडियो बसवाणी 101.1 FM साडा फेसबुक पेज है bisoni@bisoni.com साडी ईमेल आई डी है, कोई भी जरिया अपना के जवाब दियो। तो मैं हुण इस नाल जुड़ी हुई है अगली फिल्म का नाम दस दिनी हां जिहड़ी श्रीदेवी ने रिजेक्ट की थी, तो वह फिल्म सी मुहब्बतें। जी हाँ, मेकर्स इस मूवी विच अमिताभ बच्चन के अपोजिट श्रीदेवी नूं लैणा चाहुंदे सी पर उन्होंने उसनूं करन तो मना कर दिता सी। इस फिल्म नूं भी करती सी कोरीना, बाद विच किरदार ही फिल्म तो हटा दिता गया, किसी ने रोल किया ही नहीं।

वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसानी 101 एम ते जी आर जी संदेश अलग दिनाल से बने हुए हैं। एक फिल्म सी जिसने काजोल नू बहुत वड्डा स्टार बना दिता। शाहरुख खान तो पहला ही स्टार सीगे ते इन्हां दी जोड़ी नू इस फिल्म तो बाद कुछ ज्यादा ही पहचान मिली सी। फिल्म का नाम है जी, उस विच शिल्पा शेट्टी भी सी। आ गई ना यार, बिल्कुल सही पहचान है। फिल्म का नाम है जी बासीकर। इस फिल्म नू भी श्रीदेवी ने करती सी कोरी ना। इस फिल्म विच श्रीदेवी नू डबल रोल ऑफर होया सी पर एक्ट्रेस ने मना कर दिता। फिर जदों उन्होंने मना कर दिता ना तो बाद विच मेकर्स ने फिल्म की कहानी विच बदलाव ही लिया। देखो पर एक चीज तो उसे समझो कि श्रीदेवी दी किड्डी तकड़ी इंपोर्टेंस थी ना कि जिहड़ी फिल्म नू कईआं नू मना करदी सी तां उस दे विचों किरदार ही हटा दिता जांदा सी। बाजीगर दे विचों मुहब्बते दे विचों अगे भी मैं दसदी आं इस बारे, सबर रखो।

हां जी रैग बफर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी वंसन वाले ते चार छे संदेश अलग दे नाल तुसी बने होए हो। अगली फिल्म जिहड़ी इस लिस्ट दे विच आउंदी हैगी है जिस नूं रिजेक्ट कीता सी श्रीदेवी ने ओ सी जी बहुत ही हिट सुपर डुपर हिट फिल्म बागवान। तो देखो अमिताभ बच्चन की इस फैमिली ड्रामा विच उन्हां दी ऑन स्क्रीन पत्नी का किरदार हेमा मालिनी ने निभाया है। ये रोल पहला हेमा मालिनी नूं ऑफर नहीं होया सी, मतलब कि हेमा मालिनी पहली पसंद नहीं हैगी अमिताभ बच्चन दी इस फिल्म दे लई मेकर्स दी। ये रोल पहला श्रीदेवी दे हिस्से आया सी पर उन्होंने इस नूं रिजेक्ट कर दिता। रिजेक्ट होया तां फिर ये हेमा मालिनी कोल गया ते नो डाउट हेमा मालिनी इस रोल दे विच बिल्कुल परफेक्ट लगी।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हां जी, तो एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसोनी 101 FM ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। करिश्मा कपूर, माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान की एक बहुत ही जबरदस्त सोहनी जही फिल्म सी, तो उस फिल्म का नाम हैगा है जी दिल तो पागल है। शाहरुख खान स्टारर मूवी हैगी है, बहुत ज्यादा पसंद भी की गई सी। इस दे विच पूजा किरदार हैगा जिहड़ा ओ श्रीदेवी नूं ऑफर होया सी। पूजा हुण तुसीं पहला सोचो सोचो सोचो कि पूजा किहड़ा किरदार सी। ओ श्रीदेवी नूं ऑफर होया सी तां श्रीदेवी ने मना कर दिता सी, तां इह रोल बाद विच किसे होर दे हिस्से आया सी। हुण तुहानूं पता लग गया ना कि पूजा किरदार किसदा सी। जी हां, पूजा किरदार निभाया सी माधुरी दीक्षित ने, पर इस दे लई पहला चुनिया गया सी श्रीदेवी नूं।

0: permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
2: तो ओमसॉग से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल. खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई. ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी.

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 एफ ते जी आर चे संदेश अलग दिन से बने हुए। एक और शाहरुख खान की मूवी हैगी है जी श्रीदेवी ने रिजेक्ट की थी, तो मूवी सी जी डर। डर के पहली बार तो शाहरुख खान नैगेटिव रोल के नजर आए थे। शाहरुख खान सनी देओल की फिल्म है डर, जूही चावला ने किरण का किरदार निभाया। बहुत घट लोग जानते हैं कि यह रोल पहला श्रीदेवी को ऑफर होया सी, पर श्रीदेवी ने इसे मना करता सी, तो फिर रोल गया जूही चावला के हिस्से। नो डाउट जूही चावला ने इसे बहुत ही वधिया तरीके से निभाया है, पर मेकर

हाँ जी, वेला तो हो चुका है, थोड़े तो इजाजत लैन का, थोड़ा टाटा बाय बाय कहने का। पर देखो हूँ लास्ट बट नॉट लीस्ट एक फिल्म थानू दसनी हैगी है, जिहड़ी श्रीदेवी ने रिजेक्ट की थी। तो उस फिल्म जी बहुत ही खूबसूरत जी फिल्म बेटा। जी हाँ, इस मूवी दे लई मेकर्स दी पहली पसंद श्रीदेवी सी। श्रीदेवी ने जदों मना करता सी ना, तो बाद दे विच इस फिल्म दे विच माधुरी दीक्षित नू कास्ट किया गया सी, ते उन्हां दे हिस्से चले गई। तो उन्होंने जोड़ी अनिल कपूर दे नाल हिट भी साबित हुई, क्योंकि इस तो पहला तक तो अनिल कपूर दे नाल जोड़ी हैगी है जिहड़ी उह श्रीदेवी दी काफी ज्यादा पसंद की जाती सी। ते देखो ये सारिया फिल्मा है ने जिहड़ियां श्रीदेवी ने रिजेक्ट कर दिया। हुण तुसी इंज करो कि दसो कि कहड़ी फिल्म तुसी चाहुंदे हो, या ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਫਟਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਬ੍ਰਿਸੋਨੀ ਵਨ ਸਨ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ @brisoni.com ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਪਣਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

0: शूटर कालो नूं पहले गाने तों ही पहचान मिल गई सी। बच्चे बच्चे नूं पता लग गया सी कि पंजाब विच कोई शूटर कालो नाम दा वी बंदा है।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से।
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां की उपलब्धता नाल हुंदी है। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
11: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
12: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
11: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
12: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
11: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
12: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
13: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
14: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: अनु।
1: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service. Arshad Lawyers, Mount Gravett Showgrounds, Office 5, 1644 Logan Road, Mount Gravett, Ample Parking. Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वहमों गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: KR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
1: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई सरसों
0: की माला. प्रेजेंटेड बाय एलकेआर इवेंट्स ब्रिंगिंग अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंसेस टू ब्रिस्बेन.
1: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है.

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशन। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशन एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशन ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अजी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड्डे डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
5: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
6: से। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
7: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04।
1: और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आयरलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

जीवन भक्ति शक्ति और कर्मों का संगम है ये जीवन। इस जीवन को समझना बहुत ही मुश्किल है, अनेक तरह की कठिनाइयों से भरा पड़ा है ये जीवन और अनेक तरह की पहलियों से उलझा भी पड़ा है। और इस जीवन में उलझ उलझ कर हम कब अपनी लीला ही खत्म कर लेते हैं हमें समझ नहीं आता। ये भागता हुआ जीवन हमें कब अंतिम पड़ाव पर पहुंचा देता है हम समझ नहीं पाते और हमें लगता है कि हम तो जीवन को जान और समझ ही नहीं पाए। तो चलिए आज एक छोटी सी कोशिश फिर से करते हैं, जीवन आधार के जरिए अपने जीवन को, अपने जीवन की समस्याओं को और जीवन मरण के इस बंधन को जानने और समझने की। धरती यानी कि हम मनुष्यों और आकाश यानी उस ऊपर वाले के बीच की दूरी को भरने की एक कोशिश करते हैं जीवन आधार में। और शुरुआत करते हैं इस अगले गीत के साथ। रहिए सताक्षी के साथ और सुनते रहिए जीवन आधार सिर्फ और सिर्फ रेडियो ब्रिस्वानी।

जीवन की बारीकियों को सिखाता हमारा खास सफर जीवन आधार। इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर श्रोताओं, और आपके साथ सताक्षी इस सफर में है और हम कई खूबसूरत गानों के साथ इस सफर को सजाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार मनुष्य जब अकेला होता है तो बहुत विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे लोगों का साथ, लोगों की भीड़ बहुत पसंद आती है। लेकिन अगर अध्यात्म की ओर जाइए तो अध्यात्म ये कहता है कि अकेला होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं आपका अकेलापन आपको ये सिखाता है कि वास्तव में आपके पास आपके अलावा और कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में जब आप आए थे तो बिल्कुल तन्हा आए थे, और इस दुनिया से जब आप जाएंगे, आपके पास नौकरी हो अच्छी, अच्छा करियर हो, अच्छा बिजनेस हो, अच्छा पैसा हो, अच्छा घर हो, अच्छा परिवार हो, लेकिन कुछ भी आपके साथ नहीं जाता है। यहाँ तक कि आपका शरीर भी आपके साथ नहीं जाता है जिसमें आप जी रहे हैं, जिसके अंदर आप रह रहे हैं। बहुत गहरी बात है और इस बात को समझने में ही हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। आइए शायद हम थोड़ा बहुत समझ पाए हो इस बात को, और इसी बात के साथ आगे बढ़ते हैं इस अगले गीत के साथ भी। अभी सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी आपके साथ।

रेडियो प्रस्वानी पर आप सुन रहे हैं जीवन आधार। जी हाँ, ये सफर जो है ये आपके हमारे जीवन को ही हमें समझा रहा है, हमें बता रहा है और इसी सफर के साथ हम और आप आगे चल रहे हैं। कुछ और गीत इतने खूबसूरत हैं जो जिंदगी से हमें भर देते हैं और जिंदगी से मिलवा भी देते हैं, उस ऊपर वाले से कुछ गीत हमें मिलवा देते हैं। एक ऐसे ही गीत को भी आपके लिए यहाँ पर प्ले करने जा रही हूँ, इसे सुनिएगा और सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ।

मुझे ना श्रीमद् भगवत गीता बहुत पसंद है, क्योंकि कहते हैं और मैंने ये देखा भी है कि श्रीमद् भगवत गीता में आपके हर सवाल का जवाब है। इसी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी जिंदगी की समस्या हो ना, उसके 3 समाधान है। आप इस बात को बहुत आजमा के देख लीजिए, चाहे तो आपकी किसी भी समस्या के सिर्फ और सिर्फ 3 समाधान है। या तो आप उस समस्या के साथ सब्र कीजिए, आप पेशेंस रख लीजिए। अगर आप उस सिचुएशन को, जिंदगी की उस प्रॉब्लम को, उस परेशानी को, उस समस्या को बदल सकते हैं तो आप बदल दीजिए, और या फिर उसे छोड़ दीजिए। उसे छोड़ दीजिए वक्त पर, क्योंकि वक्त कई सारी चीजों को ठीक कर देता है। और इसके अलावा चौथा समाधान आपकी सिचुएशन का और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो देखिए आप अपनी प्रॉब्लम्स पर ये 3 चीज अप्लाई करके कि आप इनमें कौन सी चीज अपनी उस सिचुएशन में, अपनी उस प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं और उससे आप निकल सकते हैं या उसको आप ठीक कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम अभी जीवन आधार में इस अगले गीत के साथ। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701।

रेडियो ब्रिस्वानी पर जीवन का ये साथ है, ये सफर है जीवन आधार का, जिसमें आप एक बार फिर से सताक्षी के साथ आ जाएं और हम और आप मिलकर अपने जीवन को जानने की एक बहुत ही बेहतरीन सी कोशिश इस सफर में कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे इस अगले गीत के साथ। हमारे साथ सुनते रहिए जीवन आधार, सिर्फ और सिर्फ रेडियो ब्रिस्वानी पर।

आपका कद नहीं, आपकी विनम्रता आपको बड़ा बनाती है। एक बार फिर से सताक्षी करती है आपका स्वागत रेडियो प्रसवानी पर श्रोताओं। और कद से मतलब यहाँ आपकी हाइट से नहीं है, कद से यहाँ मतलब है श्रोताओं आपकी पोजीशन से। आप कितने भी ऊंचे बन जाएं, आप कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन वो दोहा तो आपने सुना ही होगा, बड़ा भया तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। यानी अगर आप बड़े हैं और आपका बड़ा होना किसी के भी काम नहीं आ रहा है, आपका ऊंचा चरित्र किसी के भी काम नहीं आ रहा है, तो आपका बड़ा होना व्यर्थ है। बड़प्पन असल में दूसरों को खुशियां देने में, दूसरों की जरूरत पूरा करने में है। आप किसी भी पोजीशन पर हो, अपने हिसाब से अगर आप दूसरों को खुशियां दे पाते हैं, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला पाते हैं या उनके लिए कुछ भी कर पाते हैं, तभी आपके बड़े होने का मतलब है। इसलिए ही कहते हैं कि हमेशा विनम्र रहिए, क्योंकि हम कई बार आपसे कह चुके हैं जीवन आधार में कि आपके साथ आपकी पोजीशन नहीं जाने वाली है। अगर कुछ जाएगा यहाँ से तो सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म ही जाएंगे। उन्हीं कर्मों के नाम है ये अगला गीत। सुनिए और सुनते रहिए सताक्षी के साथ जीवन।

0: जीवन आधार में अपने जीवन को, अपनी संपत्ति को, अपने कर्मों को जानने की एक कोशिश आज आप फिर से कर रहे हैं मेरे साथ, और इस कोशिश में कुछ रंग भर रहे हैं हमारे ऐसे गाने जो जीवन, भक्ति और साधना से भरे हुए हैं। ऐसे ही एक गीत के साथ आगे बढ़ेंगे, अभी सुनते रहिए हमारे साथ जीवन आधार।
1: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना कोई,

दोस्तों कहते हैं आप जब इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो कुछ आपको बातें जीवन की आपका परिवार सिखाता है, आपके माता पिता सिखाते हैं, कुछ आपको स्कूल कॉलेज की डिग्रीज सिखाती हैं, लेकिन जीवन के सही पथ को जानने के लिए, अपनी समझ को विकसित करने के लिए आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में एक गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गुरु ही है जो आपको सही मार्ग दिखा पाता है आपके जीवन का, आपको कैसे चलना है जीवन के पथ पर ये बता पाता है। अगर गुरु नहीं होगा तो आपकी समझ कभी विकसित नहीं हो पाएगी। हमारी समझ तो उतनी ही है ना कि अगर हमें जानवर कहा जाए तो हम नाराज हो जाते हैं, लेकिन अगर हमें शेर कह दिया जाए तो हम खुश हो जाते हैं, है ना। लेकिन देखा जाए तो इन दोनों में क्या ही अलग है, दोनों ही तो सिमिलर है। इसी ज्ञान को विकसित करने के लिए गुरु अत्यंत आवश्यक है, और इसीलिए गुरु को प्रभु से भी ऊपर दर्जा दिया गया है। उसी गुरु की वंदना करते हैं इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रजवाणी और रहिए सताक्षी के साथ।

तो श्रोताओं, ये था आज एक और जीवन का हमारा आपका बेहतरीन सा साथ जीवन आधार में। आई होप कि आपने आज इस सफर को एक बार फिर से जरूर सुना होगा और आपको अच्छा लगा होगा। जीवन से जुड़ी कुछ खास बातों के साथ और कुछ खास नगमों के साथ कल इसी सफर में आपके साथ शताक्षी की होगी फिर से एक और मुलाकात। हम और आप साथ साथ अपने कर्मों को, अपने जीवन को और जीवन के आधार को जानने की और समझने की करेंगे कोशिश। आज के सफर से दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल जी। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे चानी जैन और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। उम्मीद है आपका दिन एनर्जी और पॉजिटिविटी से भरा रहे। तो दोस्तों, आज के शो में हम बहुत सारी बात करने वाले हैं, इंटरनेशनल ब्रेकिंग न्यूज, इंडियन अपडेट्स, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, अमेजिंग फैक्ट्स और भी बेहतरीन बातें करेंगे हम सभी। बस आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्वानी में। तो आइए शुरुआत करते हैं चानी के सफर प्रोग्राम में इस गीत के साथ। आप बस कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्वानी में। तो आइए सबसे पहले हम टॉप हेडलाइंस जान लेते हैं जिससे हम अपडेट रह सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है और फुटबॉल फैंस का एक्साइटमेंट जो है पीक पर है। वहीं पर इंडिया और यूके के बीच ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत में अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। अगले अपडेट की बात करें तो स्काई रूट एरोस्पेस की विक्रम 1 मिशन से इंडिया के प्राइवेट स्पेस सेक्टर को एक और बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद है। वहीं पर आईसीसी ने 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में बदलाव की अनाउंसमेंट की है, जिसे कि इंडिया और पाकिस्तान के 3 बार तक आमने सामने आने की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ गई है। आईएसए के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं नेक्स्ट सॉन्ग ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

हां जी, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी चानी के साथ। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे अगली अपडेट की ओर। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल इस वीकेंड स्पेन और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल लवर्स के लिए ये सबसे बड़ी स्पोर्टिंग इवेंट्स में से एक होगा। वहीं पर क्लाइमेट चेंज के चलते दुनिया भर में स्पोर्ट्स इवेंट के शेड्यूल्स और हां जी, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी चानी के साथ। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे अगली अपडेट की ओर। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल इस वीकेंड स्पेन और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल लवर्स के लिए ये सबसे बड़ी स्पोर्टिंग इवेंट्स में से एक होगा। वहीं पर क्लाइमेट चेंज के चलते दुनिया भर में स्पोर्ट्स इवेंट के शेड्यूल्स और सेफ्टी अरेंजमेंट में काफी बदलाव किया जा रहा है।

वहीं पर भारत का प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम लगातार मजबूत हो रहा है और नए मिशंस पर सबकी नजर बनी हुई है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानेंगे बहुत सारी बातें ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

जो है वो भी इन्वायरमेंट पर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं, इसीलिए हमें भी छोटे छोटे स्टेप्स जरूर उठाने चाहिए। वहीं दोस्तों थोड़ी सी अगर हम स्पोर्ट्स अपडेट में नजर डालें तो क्रिकेट फैंस की नजर अब आने वाली इंटरनेशनल सीरीज पर बनी हुई है। वहीं पर टेनिस और फुटबॉल टूर्नामेंट में भी कई यंग प्लेयर्स जो है शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको फीफा वर्ल्ड कप का बताया तो दोस्तों इसका जो एक्साइटमेंट है वो भी अपने पीक पर है और फैंस जो है फाइनल की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, आपको इंतजार नहीं करवाते हैं, सुनाते हैं ये गीत ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

हाँ जी, तो आप सभी सुन रहे हैं ये प्यारे से गीत ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्मानी। वहीं पर अगर हम एनवायरमेंट की बात करें तो दोस्तों, प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने के लिए कई देशों में रीयूजेबल प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है और छोटे छोटे स्टेप

इस ट्रैक के बाद एक बार फिर से आप सभी का वेलकम बैक है जी। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी और आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी दोस्त जाननी जैन के साथ। तो चलिए बिना देरी ये नजर डालते हैं कुछ और बड़ी और जरूरी खबरों पर। मौसम की बात करें तो दोस्तों मॉनसून कई राज्यों में अच्छी बारिश लेकर आया है जिससे कि खेती को फायदा मिलने की उम्मीद है। हालांकि कुछ इलाकों में हैवी रेन को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। वहीं अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ब्रिस्बेन सहित ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में स्कूल हॉलीडेज के दौरान पार्क, म्यूजियम और फैमिली एक्टिविटीज में भी अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है। रिन्यूएबल एनर्जी पर दुनिया भर में जोर दिया जा रहा है। सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स में लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं। वहीं पर दोस्तों डॉक्टर्स का कहना है कि विंटर सीजन में हाइड्रेट जरूर रहें, हाइड्रेशन को इग्नोर ना करें, ठंड में भी दिन भर पर्याप्त मात्रा पर पानी जरूर पीना है। तो ये मत सोचिए कि ठंड हो गई है, प्यास नहीं लग रही है तो हमें पानी की नीड नहीं है, लेकिन आपको 2 से 3 लीटर डेली पानी पीना है, याद रखिएगा। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्बेन।

हाँ जी, वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्वानी में। दोस्तों, जहाँ पर इतनी सारी बात की तो बिजनेस अपडेट तो बनता है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की कीमतें जो हैं वो उसमें उतार चढ़ाव आ ही रहा है, वो देखने को मिल रहा है। कभी हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है, लेकिन जी थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं पर डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन बैंकिंग का यूज लगातार बढ़ रहा है। एआई की बात करें तो एआई और टेक्नोलॉजी सेक्टर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे हैं। तो दोस्तों, बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो बॉलीवुड और साउथ सिनेमा दोनों में ना कई बड़े प्रोजेक्ट्स इस साल रिलीज होने वाले हैं। तो भाई इंतजारी जो है ना खत्म होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में नए नए गाने, नए नए सीन्स जो है, नए नए मूवीज आप सभी को देखने को मिलेगी। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों, आप सभी को एक ब्रेकिंग न्यूज बताना चाहते हैं, वो ये कि ओडिशा के पुरी में इस वक्त बहुत बड़ी खबर आई है। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भारी भीड़ के बीच जो है भगदड़ जैसे हालात बन गए हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार एक श्रद्धालु की मौत भी हो गई है, जबकि 100 से अधिक श्रद्धालु जो है बेहोश या फिर बीमार पड़ गए हैं। घायलों और प्रभावित लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है और प्रशासन ने मौके पर सुरक्षा व्यवस्था और मेडिकल टीमों को और भी मजबूत कर दिया है और घटना की जांच जो है शुरू कर दी है। भगवान जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा में दोस्तों हुई इस दुखद घटना ने सभी श्रद्धालुओं को झकझोर कर रख दिया है और हमारी यही प्रार्थना है कि सभी घायल श्रद्धालु जल्द से जल्द स्वस्थ हो। तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम, जहां पर आज हम सभी ने बहुत सारी अपडेट्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानी है। और इसी के साथ दोस्तों, ये प्रोग्राम भी अभी समाप्त होता है। वीकेंड आ चुका है, आप सब एंजॉय कीजिए, तंदुरुस्त रहे, सेहतमंद रहे, अपने परिवार के साथ हंसते मुस्कुराते हुए ये वीकेंड को एंजॉय जरूर कीजिए। मिलेंगे आपको अगले वीक यानी कि मंडे, तब तक के लिए आप फंडे को जारी रखते रहे। टेक केयर, बाय बाय, सुनते रहिए रेडियो ब्रेसवानी।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी 1701 है। हमारी सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। न्यूयॉर्क में बग्घी बैन करने की मांग, भारतीय किशोर की मौत के बाद पिता ने तोड़ी चुप्पी। अमेरिका में मां को बचाने की कोशिश में बग्घी से गिरकर जान गंवाने वाले भारतीय किशोर के पिता दीपक महाजन ने न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल से बग्घी पर रोक लगाने की अपील की है। ये बात उन्होंने तब कही जब एक पैनल उनके बेटे रोमांच के नाम पर प्रस्तावित कानून पर विचार कर रहा था। फ्रांस ने वेंस को भेजा गोपनीय संदेश, कुशनर विटकॉफ पर लगाए युद्ध से मुनाफे के आरोप। अमेरिका और ईरान के बीच जारी कूटनीतिक खींचतान के बीच अमेरिकी मीडिया संस्थान ड्रॉप साइट न्यूज की एक रिपोर्ट ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट में एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के हवाले से दावा किया गया है कि पिछले महीने स्विट्जरलैंड में हुई अप्रत्यक्ष वार्ता के दौरान ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे डी वेंस के लिए एक गोपनीय संदेश भेजा था। इसमें आरोप लगाया गया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर पश्चिम एशिया में लंबे समय तक शांति स्थापित नहीं होने देना चाहते और युद्ध की परिस्थितियों से वित्तीय लाभ उठा रहे हैं। अमेरिकी सेना पर $1.5 ट्रिलियन खर्च की तैयारी, एआई रोबोटिक्स पर जोर दे रहे ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगले वित्त वर्ष में अमेरिकी रक्षा बजट को बढ़ाकर $1.5 ट्रिलियन करने की घोषणा की है। पेंसिल्वेनिया में आयोजित डिफेंस एंड इनोवेशन समिट को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि ये निवेश केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नहीं बल्कि अमेरिका में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने के लिए भी किया जा रहा है। आइए जुड़ते हैं अब भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों का बड़ा कदम, एआई के लिए मिलकर बनाएंगे साझा नियम। मोबाइल बैंकिंग, अस्पताल, पढ़ाई और सरकारी सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को बढ़ाने के साथ ही उसके गलत इस्तेमाल का खतरा भी बढ़ रहा है। इससे बचाव के लिए अब दुनिया एआई के साझा नियम बनाने की कोशिश कर रही है। भारत, चीन, रूस और ब्राजील समेत ब्रिक्स के सभी देश मिलकर तय करने का प्रयास कर रहे हैं कि एआई और दूसरी तकनीकों के लिए ऐसे कौन से कॉमन नियम बनाए जाएं जिनका सभी अनुशासित तरीके से पालन कर सकें। सेना प्रमुख ने किया सिलीगुड़ी कॉरिडोर का दौरा। भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने हाल ही में पूर्वी कमान के तहत आने वाले प्रमुख सैन्य ठिकानों का दौरा किया है जिनमें बेंगडुबी सैन्य थाना भी शामिल है। यह थाना रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के लिए सबसे जरूरी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित है। नेपाल और बांग्लादेश को अलग करने वाला हिस्सा 20 किलोमीटर से भी कम चौड़ा है। ये कॉरिडोर नेशनल सिक्योरिटी के लिए खास महत्व रखता है क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट को बाकी भारत से जोड़ने वाला एकमात्र रोड और रेल लिंक है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नीलम का प्यार भर नमस्कार दोस्तों। 4 मिनट हो गए हैं 7 बजकर और सुबह का सफर में आप शामिल हो गए हैं हमारे साथ 9 बजे तक ये साथ रहेगा। दोस्तों आज फ्राइडे है 17th जुलाई 2026। भीगा भीगा सा मौसम है, थोड़ी देर में आपको फोकास्ट बताएंगे हम। और सप्ताह का अंत भी है तो एवरीवन इज एक्साइटेड। रास्ते पे है आप, हले हले सफर कीजिएगा अपनी मंजिल की ओर। ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे कहना चाहेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आगे बढ़ते हैं।

0: वाला।
1: दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत आप सुन रहे थे और अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत कर लेते हैं आपका। रेडियो बिजवानी पर शामिल है आप। चलिए देखते हैं फोरकास्ट में क्या बताया गया है। ब्रिस्बेन 13 डिग्रीज अभी है ड्रिजल और विंड गस्ट आर अप टू 28 किलोमीटर एन आवर और आज 95% चांस ऑफ रेन बताया गया है। सैटरडे को 90% चांस रेन रहेगा, संडे को 90% चांस रेन रहेगा। मेलबर्न 5 डिग्रीज अभी है, मोस्टली क्लाउडी डे रहेगा, टॉप्स रहेंगे 18 और विंड गस्ट 11 किलोमीटर एन आवर। कैनबरा 2 डिग्रीज, मोस्टली क्लाउडी डे, टॉप्स रहेंगे 14, सनी डे बताया गया है। लेट ऑन इन द डे सिडनी 12 डिग्रीज अभी है, क्लाउडी डे रहेगा और आज के लिए सिडनी में 95% चांस ऑफ रेन बताया गया है और टॉप्स रहेंगे 17। गोल्ड कोस्ट 14 डिग्रीज अभी है, टॉप्स रहेंगे 20 और विंड गस्ट बताया गया है 37 किलोमीटर एन आवर और आज 100% चांस रेन बताया गया है गोल्ड कोस्ट में। सनशाइन कोस्ट के लिए बताया गया है 16 डिग्रीज अभी है और आज 90% चांस ऑफ रेन रहेगा, विंड गस्ट विल बी 40 किलोमीटर एन आवर। तो ये कुछ फोरकास्ट हम आपको दे रहे थे। तो आज तो भीगा भीगा सा मौसम रहेगा, बहुत ही खूबसूरत एंड दोस्तों, और ठंड भी है एंड अच्छा कॉम्बिनेशन है टू हैव नाइस टी एंड कॉफी एंड कुछ चटपटा सा। अभी टू अर्ली है मॉर्निंग में, लेकिन चाय तो पी सकते हैं ना, चाय एंजॉय कर सकते हैं आप हमारे साथ जुड़े हैं एक कप ऑफ चाय के साथ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत से गीत लाए हैं आपके लिए, हैप्पी फ्राइडे विश करना चाहेंगे आपको। मैं हूँ आपके साथ ही नीलम।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane. LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
2: वेलकम बैक दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं सुबह के सफर में। ट्रैफिक अपडेट्स देखते हैं। वैसे थोड़ी देर पहले हुआ था ये इवेंट्स रोड सेल्सबरी में, यहाँ पर सिंगल व्हीकल क्रैश हुआ था, विच इज नाउ बीन क्लियर्ड। और अपडेट्स हमें मिलते हैं तो आपको बताते चलेंगे। वैसे रास्ते पर है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं सुबह के सफर में। ट्रैफिक अपडेट्स देखते हैं। वैसे थोड़ी देर पहले हुआ था ये इवेंट्स रोड सेल्सबरी में, यहाँ पर सिंगल व्हीकल क्रैश हुआ था, विच इज नाउ बीन क्लियर्ड। और अपडेट्स हमें मिलते हैं तो आपको बताते चलेंगे। वैसे रास्ते पर है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा।

फर्स्ट ऑफ ऑल ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे, द बर्निंग ट्रेन से इस गीत को हमने लिया। वैसे आगे बढ़ते हैं सुबह का सफर में। वैसे कहते हैं कि शब्द ही दवा देते हैं और शब्द ही घाव, तो दे वॉज समथिंग सिमिलर लाइक दिस कि जो आप परोसोगे वो आपको खाना ही पड़ेगा। तो जैसे वर्ड्स आप निकालते हो अपने मुंह से, तो ध्यान रखिए दोस्तों कि किसी को घाव ना दे, मे बी एक्ट एज दवा, राइट? एंड इसका मतलब नहीं है कि आपको किसी को प्लीज करना है।

प्लीज नहीं करना है, बट किसी को हर्ट भी नहीं करना है ना। तो ऐसे ही अपने आप पर ये नियंत्रण जरूर धरे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिजवानी, आपकी अपनी पहचान। सुबह का सफर में शामिल हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत करते हैं आपका।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
10: वेलकम बैक दोस्तों. और जो लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो विश करना चाहेंगे वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे आपके लिए. ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से एंड बेस्ट विशेस. और एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई भी इम्पोर्टेंट ओकेजन है आपके लिए लाइफ में आज सेलिब्रेट कर रहे हैं आप, तो ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. इट्स 7:32.

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: इट्स टाइम टू कंप्लीट योर सेंसस ऑन ट्यूसडे 11th ऑफ अगस्त 2026. Everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं सुबह के सफर में। किसी ने पूछा, जब वजन बढ़े तो क्या करें? जवाब बड़ा सुंदर था, जब तन का बढ़े तो व्यायाम करो, जब मन का बढ़े तो ध्यान करो, और जब धन का बढ़े तो दान करो। बहुत ही अच्छा। एंड तीनों एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को कवर किया है इसने। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: वेलकम बैक दोस्तों, और सुबह का सफर में आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जहां पर बता रहे थे कि किस तरह के जो चॉपिंग बोर्ड्स है जो हम यूज करते हैं किचन में आए दिन, तो किस तरह से ये अफेक्ट करते हैं। एक्चुअली मैं पढ़ रही थी तो जहां तक पूरे आर्टिकल फिनिश नहीं की, लेकिन यू नो कहते हैं कि जो आधा ज्ञान होता है वो बहुत डेंजरस होता है आपके लिए, तो आधा ही ज्ञान शेयर करते हैं फिलहाल के लिए। तो बातें हो रही थी यहाँ पर कि जो चॉपिंग बोर्ड्स हम यूज़ करते हैं, यू नो वाइट वाला होता है और प्लास्टिक का होता है जो हम यूज़ करते हैं, तो कहते हैं कि जब हम कोई फोर्स उस पर यूज होता है या ब्लेड्स जो नाइफ हम उस पर लगाते हैं, आप देखोगे कि उस पर ढेर सारे मार्क हो जाते हैं एंड वो मार्क नहीं जाते हैं, ग्रूव्स हो जाते हैं। एंड ऑब्वियसली जब नेक्स्ट टाइम आप काटते हो उस पर, फिर ओवर एंड ओवर टाइम पर, तो मार्क्स बढ़ते जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि उसमें से जो प्लास्टिक निकलता है वो सीधा सीधा हमारे टमी में जाता है, और पढ़ने के बाद काफ़ी सिक फीलिंग सी आई मुझे। तो और वैसे हम यहाँ पर बड़े ईमानदारी से जाकर अपने जो वाटर बॉटल्स है वो डिफरेंट वाला लाते हैं, शॉपिंग भी जब हम जाते हैं पेपर बैग्स यूज़ करते हैं, बचना चाहते हैं प्लास्टिक से, लेकिन घर में अगर ऐसा चॉपिंग बोर्ड रखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा प्लास्टिक आप खा ही जाते हैं खाना के साथ। लेकिन नो नो सीरियसली दोस्तों, कि अगर हम जब उस तरह के जो चॉपिंग बोर्ड्स है जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली 50 ग्राम्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स फ्रॉम कटिंग बोर्ड हम एवरी ईयर लगभग स्वलो करते हैं, सो विच इज़ ऑब्वियसली वेरी वेरी डेंजरस, और हमारे जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको पूरा खराब कर देते हैं, हमें सिक करते हैं। तो ढेर सारे इस पर एनवायरमेंटल स्टडीज हुए हैं एंड एवरीथिंग, और रिसर्च हुआ है नॉर्थ डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी में, और क्या कहते हैं जो माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं, टाइनी प्लास्टिक फ्रेगमेंट्स होते हैं स्मॉलर देन 5 मिलीमीटर्स जो होता है, और ये मैकेनिकल फोर्स नाइफ स्लाइडिंग अक्रॉस कटिंग बोर्ड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, एंड once ingested some can accumulate over time in the gut, blood and organs, or you know, or ye hamare liye bahut hi hanikarak hai, and you know jaise jaise hum grow old hote hain hamare jo body hai usko bahut zyada takleef hoti hai to fight off everyday toxins, to ये डॉक्टर्स आर नाउ फाइंडिंग दैट माइक्रोप्लास्टिक्स एक्ट एज पावरफुल एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स, दैट मीन्स दे मेस विद आवर हार्मोन्स एंड ट्रिगर अनएक्सप्लेन्ड गट इश्यूज और क्रोनिक जॉइंट इन्फ्लेमेशन, ये हमारे एनर्जी को ड्रेन करता है एंड एवरीथिंग। तो कहते हैं कि ऑब्वियसली दे आर सो दैट मेनी जो कहते हैं दैट मेनी माइक्रो प्लास्टिक्स जो कहते हैं इट्स मोर लाइक सो मेनी क्रेडिट कार्ड्स आप स्वलो करते हो बेसिकली, एंड विच इज रियली रियली स्केरी, 50 सॉर्ट ऑफ 50 आई थिंक क्रेडिट कार्ड, ऑलमोस्ट 50 क्रेडिट कार्ड्स अगर समझ लो आप स्वलो करते हैं एक साल में, सो दैट इज रियली रियली स्केरी। तो देर आर ऑप्शंस की किस तरह के आप यूज कर सकते हो। वैसे कुछ लोग वुड पसंद करते हैं, बट वुड में क्या होता है कि आपको वुड यूज करने के बाद जो चॉपिंग बोर्ड्स होते हैं उसको ऑयल करना होता है, ताकि कुछ पोरस होता है ना, तो मूव होता है, और फिर जो जो चीजें आप काटते हो उस पर वो निकलता है, फिर दूसरे फूड में अब्सॉर्ब होता है. तो मेक श्योर क्या कर सकते हैं आप, मेक श्योर कर सकते हैं दोस्तों कि आपके जो मीट कटिंग वुड है वो डिफरेंट हो, आपका वेजिटेबल कटिंग वो डिफरेंट हो. नाउ आई एम थिंकिंग समटाइम्स कि इसे पढ़ने के बाद मैं सोच रही थी कि पहले के टाइम पर अब व्हेन यू लुक एट योर ग्रैंडमम्स एंड आजी को देखते हो, वो तो ऐसे ही काट लेते टमाटर या कुछ भी ऐसे ही हाथ में रखकर काट देती थी, आई नो. एंड अभी अभी जब जब हम बड़े होते हैं तो हम सीखते हैं कि चॉपिंग बोर्ड लाओ, यू नो चॉपिंग बोर्ड पर काटना है, एंड देन उसके साथ कितने सारे और प्रॉब्लम्स, यू नो इतनी सारी प्रॉब्लम्स लेकर आती है. एंड दोस्तों इस आर्टिकल को अच्छी तरह से पढ़कर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे नाउ, लेकिन ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर डालेंगे कि कौन सा चीज़ है जो हमें यूज़ करना चाहिए कि जो हमें बेटर या सेफा, यू नो हमारे प्रैक्टिसेस को सेफा करें. आई नो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन क्लीन योर वुड एंड एवरीथिंग, बट देन क्लीन करने के बाद वुड को ऑयल भी तो करना पड़ता है, तो कि ताकि एनवायरनमेंट का जो डर्ट है वो ऑब्जर्व करके ना बैठा रहे, क्योंकि आप फिर जाकर यूज करोगे एंड ऑब्वियसली यू गोना वॉश इट, बट स्टिल इट्स ऑयल इन दैन इट्स आई डोंट नो. सो ये आई विल बी डिस्कसिंग दिस, आई बी टॉकिंग अबाउट दिस अगेन इन अ वेरी प्रॉपर वे. बट ये जो आधा ज्ञान अभी आपके साथ मैंने शेयर किया है दोस्तों, डोंट माइंड, लेकिन आई विल बी लीविंग अ क्वेश्चन इन योर हेड दो कि कौन सा चॉपिंग बोर्ड हमें यूज करना चाहिए ताकि हम सेफ रहे. एंड चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं.

वेलकम बैक दोस्तों. नाउ आई हैव दिस सॉन्ग हियर जो मेरी बेटी ने मुझे दिया और उसने कहा कि मॉम लिसन टू दिस. उसको अचानक से ये गीत मिला और उसने कहा कि यू नो, जब घर पर कोई एक ऐसा कॉल आता है एंड यू फील कि ये स्कैमर्स का कॉल है एंड आप नंबर देखते हैं, आप उठाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई आपको कोक्स कर रहा है कि अपने डिटेल्स आप उसको दो और एंड देन आफ्टर सम टाइम आप फ़ोन उठाना नहीं चाहते, राइट? एंड तो ये विद दिस स्टोरी शी सेड यू मस्ट प्ले दिस सॉन्ग बिकॉज दिस इज सच अ मैचिंग सॉन्ग. ये स्कैमर्स के लिए है जो बेचारे लोगों को स्कैम करना चाहते हैं और उनसे पैसा लूटना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लूटना चाहते हैं एंड देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग आउट देयर. लेकिन दिस आई थिंक इज अ सॉन्ग दैट बड़े अच्छी तरह से फिट होता है एंड पहले सुना था एंड काफी दिनों बाद इस गीत को सुना है. सो लेट्स, या

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
7: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: वेलकम बैक दोस्तों, 3 मिनट हो गए हैं 8:00 और 1 घंटे का सफर बाकी है। हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं, स्वागत कर लेते हैं आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं।

वेलकम बैक दोस्तों। और ट्रैफिक अपडेट देते हैं। लेटविच रोड विंसॉ में यहाँ पर मल्टी व्हीकल क्रैश हुआ है। वन लेन इज ब्लॉक साउथ बाउंड टुवर्ड्स हस्टन। और दैट्स द वन ट्रैफिक अपडेट अभी के लिए। और दोस्तों रास्ते पर है, ज़रूर अपना ध्यान रखें, क्योंकि सिंस फ्राइडे है और बट स्कूल भी है एंड सभी लोग बहुत बहुत रश में रहते हैं आजकल। यू फील कि सभी को बहुत गुस्सा भी आता है रास्ते पर, यू नो, एंड गुस्सा में ड्राइविंग करना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन दे आर पीपल बहुत बहुत एंग्री हो जाते हैं रास्ते पर। तो संभल कर चलाएं और ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें। और फिर बारिश भी रहती है तो ज़्यादा कैओस रहता है रास्ते पर, तो बेहद ख्याल रखें। और रास्ते पर ही आप बेसिकली ऑन द रोड रहते हैं, आप अगर ऐसा जॉब है आपका तो तब तो आपको और भी ख्याल रखना चाहिए। तो आजकल ऐसा हो गया कि काम पे नहीं जंग पर जा रहे हैं लोग। आई नो राइट, ऐसा सिचुएशन हो गया है। लेकिन एनीवे, जो भी कर रहे हैं दोस्तों, आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरे। बी सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और अगर आप वेदर आपको डाउन करता है, स्पेशली विंटर में ऐसा होता है दोस्तों कि कुछ लोग बहुत डाउन फील करने लगते हैं। इट्स वेदर के कारण ऐसा होता है विंटर में। जब विंटर लगता है तो बिकॉज ड्रीरी रहता है और जल्दी से रात हो जाती है, डार्क हो जाता है ऑफ कोर्स। एंड सनी टाइम जब समर रहता है या फिर स्प्रिंग के टाइम होता है तो आहिस्ते आहिस्ते डार्कनेस आती है। वेदर के कारण और के कारण भी लोगों को ऐसा डिप्रेशन या डाउन फीलिंग होता है दोस्तों। सो जो ब्लूज होते हैं, विंटर ब्लूज, एंड किस तरह से आप इसको यू नो ओवरकम कर सकते हैं, तो मेक श्योर यू हैविंग आई फील। अगर आप अकेले रहते हो तो आप क्या करोगे, यू नो। सो अगर आप यू नो यू लिव अलोन, आपको ऐसा सिचुएशन होता है कि जहाँ पर आप विंटर आपको डाउन करता है, आपका मूड ही डाउन रहता है, नथिंग गेट्स इट यू नो गोइंग, सो मेक श्योर यू हैव अ गुड वॉक। अगर आपको चांस मिलता है तो आफ्टरनून में आप वॉक जाए। सो यू आर कीपिंग योरसेल्फ बिजी। और फिर इससे क्या होता है, जो हैप्पी हार्मोन्स है वो रहते हैं, यू नो, व्हेन यू आर वॉकिंग यू हैव फ्रेश एयर ऑन योर फेस। और फिर मेक श्योर यू हैव कैंडल्स एज वेल। लाइट तो होता ही, कैंडल का एक अलग इल्यूमिनेशन होता है, एक ग्लो रहता है, यू नो, एंड इट ब्रिंग्स पीस इन योर हार्ट। और तो क्या है कि यू नो सॉरी दोस्तों, और कैंडल्स होते हैं, म्यूजिक होता है, और ऐसे ही आप न्यूज़ देखते रहते हो हमेशा तो और भी आपको डाउन, क्योंकि न्यूज़ में अनफॉर्चुनेटली अच्छी न्यूज़ें जो न्यूज़ होते हैं वो दैट वाज फनी न्यूज़ है इंग्लिश में इंडियन तड़का। Unfortunately, sorry. I think I'm also having a croaky throat coming up. Anyway, तो हाँ, so ऐसे जो news होते हैं और जो आपको upset करती है और पहले से आपका जो mood down रहता है, तो ये बड़ा अच्छा mixture होता है आपको बहुत ही down करने के लिए। तो दोस्तों, have some music going on, have the candles going on, make yourself a nice, you know, nice food or something and enjoy that. Could possibly bring your mood up, or talking to your friend even. But evening mein apne aap ko bas ghar ke bhitar rakhna is gonna just make it worse. So make sure you are exercising as you're going for walks and stuff. So ye aapko ready karta hai evening ko. Agar especially agar aap akele rehte hai, तो आपको रेडी करता है। आप घर में अंदर चले, अभी आप स्ट्रीट में 5:30 बज गया है, अगर 6, यू नो, एवरीवन इज इनसाइड इंडोर्स एंड एवरीथिंग इज लाइक ओके क्लोज्ड। सो ये अच्छा नहीं है। एंड सो लिटिल थिंग्स दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ, जो आपको अपलिफ्ट करे आपका जो मूड है। एंड ये चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत

0: नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: वेलकम बैक दोस्तों, और हमारे पास एक्चुअली मैं देख रही थी कि इन इमरजेंसी सिचुएशन कभी ऐसा होता है, अगर अभी विंटर के कारण समझ लो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नहीं है, तो आप किस तरह से अपने आप को वार्म करोगे, या फिर आप कैंपिंग जा रहे हो और वहाँ पर किस तरह से कुछ लोग पसंद करते हैं कि दिस टाइम कैंपिंग पर जाते हैं, तो आपको नीडेड है एक समझ लो 4 या 2, इट टोटली डिपेंड्स कि कितना बड़ा है आपका क्लेपॉट। आप क्लेपॉट लें और 2 या 4 आप ब्रिक्स लें और कपल ऑफ कैंडल्स लें, एटलीस्ट 3 कैंडल्स। तो फिर क्या होता है, जो ब्रिक को रखे नीचे और उसके ऊपर जो क्लेपॉट है उसको उल्टा कर एज अ होलो एंड वो नीचे रहेगा, तो ब्रिक पर अच्छी तरह से ऐसे धर दें और फिर नीचे आप कैंडल्स बारें। कैंडल्स क्या करता है कि बारने से, बिकॉज क्ले हीट अब्जॉर्ब करता है और रेडिएट करता है, और ब्रिक करता है स्टेबलाइज करता है जो क्लेपॉट है, और एलिवेट करता है एयर फ्लो, और ये स्टेडी जेंटल रूम वार्मिंग इफेक्ट देता है। तो ये बैक ऑफ अ माइंड हमेशा रखे कि क्लेपॉट तो ऐसे ही मिल जाता है, कैंडल्स तो घर पर रहते ही हैं, और ईट तो कहीं भी हम स्टॉक रखते ही हैं। तो कभी ऐसा सिचुएशन आया जहां पर आपको नीडेड है कि आप वार्म रखे अपने आप को, तो ये बड़ा इजी वाला सिचुएशन है, आप सेट कर सकते हैं अपने घर पर और यूज करते हैं, या फिर कैंपिंग जाते हो वहां पर भी यूज करते हो। बहुत बड़ा स्मार्ट है एक्चुअली, आई थिंक इज वेरी स्मार्ट। एंड ये नाउ, ऐसी बात पर मुझे एक इंसिडेंट याद आया, जब मैं नर्सिंग कर रही थी फर्स्ट ईयर में अपने थी, तो वहां पर कुछ नर्स से मुलाकात हुई, फ्रेंड्स भी बन गए। एंड तो वो अपना स्टोरीज बता रही थी कि जब वो आइलैंड में एज अ नर्स, जब वहाँ पर दोनों फ्रेंड्स थी, एक्चुअली लकली दोनों ही आइलैंड में काम कर रही थी, मुझे याद नहीं है कौन से आइलैंड में, लेकिन एंड देन दे हैड अ डिलीवरी, बेबी वॉज बॉर्न, और वहाँ पर ऑब्वियसली बेबी को वार्म करने के लिए था नहीं, बट कुछ हुआ था उस दिन एंड they needed to keep the baby warm and everything, so they wrapped the baby in the foil, like blanket karke fir foil karke, and they kept it close to them and near a fireplace, and so they could keep the baby warm, because uska jo baby ka warma tha wo nahi chal raha tha, so that was how they could do it, and it was such an amazing story. And especially, just imagine weather is bad and there's no electricity, and you have to use your dimag ki kis tarah se ek baby ko aap safe rakh sakte hain, and this is what they came up with, and I think it was such an inspirational story. And you know how जब आप पहले पहले किसी प्रोफेशन में जाते हो, देन यू लिसन टू ऑल दिस स्टोरीज एंड दे मेक यू वाओ, एंड दे मेक यू थिंक कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग दे कुड कम अप विथ, एंड कितना अच्छा लगता है। एंड आई एम श्योर आप जो भी आप प्रोफेशन में हैं, आपका भी कुछ ना कुछ तो एक इंसिडेंट आपके दिमाग में रहा होगा कि हे दिस इज व्हाट दे डिड, एंड ऐसा हुआ था, ऐसा इसने किया था, ऐसा हम भी दिमाग में रखते हैं कि ऐसा कुछ कर सकते हैं इफ कोई सिचुएशन अराइज हुआ, राइट? सो एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल जो भी आप कर रहे हैं दोस्तों। सो आई एम श्योर दिस इज गोना बी विद मी टिल द डे आई डाई, दिस इज सम स्टोरीज दैट ऑलवेज स्टे विद यू, दो इसमें मैं नहीं थी लेकिन इसे मैंने

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो।
1: वेलकम बैक दोस्तों, और इट्स 8:33, आधे घंटे का सफर बाकी है। हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं, स्वागत कर लेते हैं आपका दोस्तों। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी, आपकी अपनी पहचान, और याद दिला दे कि 9 पर जुमा प्रोग्राम है। ट्रैफिक अपडेट देते हैं। ग्लेनाला रोड डायरेक्ट में यहां पर मल्टी व्हीकल क्रैश हुआ है। लेन और लेन्स आर रिड्यूस ऑल डायरेक्शंस, ये 3 मिनट्स अगो हमारे पास आया था। और चलिए आगे बढ़ते हैं।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे और आगे बढ़ते हैं। वैसे कहते हैं कि जो समय है, सेहत है, दोस्त है और व्यवहार है, ऐसे जो कीमती निवेश है जो उम्र बढ़ने के साथ और अधिक मूल्यवान हो जाते हैं। तो दिस इज सो ट्रू कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे एज जब बढ़ता है, तो वैसे ये तो कहते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर, बट हाँ, इस नंबर के साथ साथ जो हमारे दोस्त है, हमारे सेहत है, हमारा जो हेल्थ है और जो टाइम है और जिस तरह से हम बिहेव करते हैं, ये सब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और इस पर हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत हो जाती है दोस्तों। तो टेक अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से आप देखें और एज वी ग्रो ओल्डर इन चीज़ों पर बहुत ध्यान दें। और जो समय है, स्पेशली द मेन थिंग आई गेस इज आपका जो सेहत है, आपका हेल्थ है, इस पर ढेर ध्यान दें, क्योंकि जो टाइम होता है जब जब अच्छे रहते हैं आप तो सभी लोग रहते हैं, जब बीमार रहते हैं तो आप अकेले ही रहते हैं, यू नो। सो दिस इज लाइफ्स हार्ड ट्रूथ एंड ये हमेशा रहेगा, इट्स ऑलवेज गोना स्टैंड देयर कि आप रोते हैं, आप अकेले रोते हैं, और जब आप हैप्पी रहते हैं, सभी के साथ हैप्पी रहते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान रहता है जो आपके रोने पर भी आपके साथ रहता है। सो आई नो दिस इज वेरी हार्ड एंड बट ये ट्रूथ है। एंड तो उसी तरह से सेहत जो हमारा होता है, जब बीमार रहते हैं, आप अकेले ही रहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप अपना सेहत का ख्याल रखें। एंड और हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि दोज आर द वंस हु हैव गोन थ्रू योर अप्स एंड डाउन्स, हु हैव, जैसे कि अभी हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं जो 16 ईयर पर जो हमारे फ्रेंड्स थे एंड 25 ईयर्स पर अगर जो वो आपके साथ है, सो आप वो 16 ईयर वाला पर्सन नहीं है, 25 ईयर यू हैव ग्रोन एंड यू हैव बीन इन टू अ डिफरेंट पर्सन एंड आप एज वाइज वर्सा एज वेल। सो चेंजेस भी आपने अडॉप्ट किया है, लेकिन मे बी एट अ 60 या 60 पर या 70 पर यही दोस्त अगर आपके साथ है, दे आर द ट्रू जेम्स ऑफ योर लाइफ, सो उन्हें संभाल कर रखिएगा। सो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। एंड ऑब्वियसली आप तो जानते हैं टाइम तो इम्पोर्टेंट है ही, सो ऑल दिस थिंग्स ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: दोस्तों आपको बता दें कि नेक्स्ट फ्राइडे
2: एंड्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू
1: नेक्स्ट फ्राइडे से हम नहीं रहेंगे टिल 7th of August को आपको मिलेंगे। तो ये जस्ट बी अवे फ्रॉम द कंट्री, सो गोइंग अवे एंड सो ये आई स्टिल हैव टू टेल जतीश अंकल, लेकिन पहले अभी से बता दे क्योंकि शायद लेटर ऑन भूल जाए। लेकिन दोस्तों लाइफ गोज ऑन, और चलिए आगे बढ़ते हैं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूं। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di intricacies nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offence vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: दोस्तों, अब तो जाने का वक्त हो गया है और आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत मजा आया और आशा है कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे आपके लिए। हैव अ लवली डे, ब्यूटिफुल वीकेंड, और मिलते हैं अगस्त 1st वीक में। टिल देन ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701 3279-1701।

और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूँ हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान, संगीत की जानकार, हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79 ब्रिस्बेन पर।

0: दिलों को झंकृत करे,
1: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत से रंग बिखेरे।
2: और अभी से लेकर 10 बजे तक रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान। आज का दिन शुक्रवार का दिन आप सबके लिए शुभ हो, और आज जुमा है और आप सब सुनने वालों को जुमा मुबारक। आप सबको हमारा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाह व बरकातहू हो। और शुरुआत कर रहे हैं हमारा रेगुलर सेगमेंट आज जुमा है।
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

0: सब तरह की तारीफ खुदा ही को सजावार है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम।
1: इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।
0: ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं।
1: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين।
0: हम को सीधे रास्ते चला उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजल व करम करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा और न गुमराहों के।
2: Here at Radio 79 Brisbane, we have decided to repeat old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan. As you know, late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan has been presenting radio programs for more than 50 years. Out of his collection of old programs, we'll bring to you selected old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan in this segment, Aaj Juma Hai. To chalo. आज जुमा है प्रोग्राम आपके खिदमत में, महरूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीन इस्तफा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील। وارسل عليهم طيرا ابابيل ارميهم بحجارة من سجيل واجعلهم كعصف ماكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم عزيزان ملت برادران محترم और मेरे अजीज भाइयों और मेरी अजीज बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जुमा का बरकत और रहमत वाला दिन नसीब फरमाया है। अल्लाह तबारक तआला ने ये दीन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत को अता फरमाया है। इसमें दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों के ईमान के अंदर नूर पैदा फरमा देता है। इसी बात इस दिन की कदर करने और नमाज जुमा अदा करने और दुआएं मांगने की अगर अल्लाह तौफीक दे दे तो बड़ी नेमतों को हासिल कर लेता है। इसलिए हुक्म दिया गया, कोई ईमान वाला जुमा के दिन नमाज न छोड़े, इस दिन को गफलत में न गुजार दे, इसकी इज्जत अपने दिल में बिठाए और इसकी कदर करके अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के अंदर इस दिन को गुजारें। ये दुआ की कबूलियत का भी खास दिन है। अल्लाह तबारक व तआला इसका यकीन नसीब फरमाए और अमल की तौफीक अता फरमा दे, आमीन। आज कुरान करीम की जिन दो मुबारक सूरतों को मैंने तिलावत किया है, इसी की रोशनी में चंद बातें अर्ज करनी है। पहली है सूरतुल फील। इसको एक मरतबा इसी रेडियो के अंदर मैं पहले एक मरतबा मुख्तसर तफसीर कर चुका हूं, लेकिन आज थोड़ा इशारा और बातों का करता हूं। अल्लाह तबारक तआला ने अपनी इबादत के लिए मक्का मौजमा में एक मुकद्दस मकान बनाया है, इसको बैतुल्ला शरीफ कहते हैं। ईमान वाले इस घर की बड़ी इज्जत करते हैं, बल्कि मुशरिकीन मक्का के रहने वाले अगर से बुतों की परस्तिश करते थे, लेकिन इस घर की बड़ी इज्जत करते, तवाफ काबा करते थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं वो भी बुलंद करते थे और वो समझते थे कि अल्लाह का पाक घर है। हाजियों की बड़ी खिदमत करते थे, पानी पिलाना, हाजियों की मेहमान नवाजी करना, जिनको कुफर के मुब्तला होने के बावजूद ये खिदमतें करने में वो अपनी सआदत और खुशकिस्मती समझते थे और इसी की वजह से मक्का वालों की बड़ी इज्जत भी थी। यमन के बादशाह अब्राहा ने अपने मुल्क के सना शहर के इबादत था और जो अपना इबादत खाना बनाया था उसकी ज्यादा से ज्यादा कदर हो जाए और लोग उसी में इबादत के लिए आए, इसके लिए उसने एक बहुत बड़ा गिरजा बनाया था। बहरहाल फिर भी यमन, शाम, अरब के तमाम मुल्क के लोग हज के इरादे से मक्का मौजमा आते थे। अब रहा अपनी 60 साल अपनी 60,000 फौज को लेकर, जिसमें ज्यादा से ज्यादा हाथी थे, इस इरादे से आया जब बैतुल्लाह शरीफ को नऊज़ु बिल्लाह हम खत्म कर दे तो फिर हमारा सना और हमारा बनाया हुआ इबादत खाना खूब, उसमें खूब इबादत होगी और लोग इसी की तरफ आएंगे। ये 60,000 की फौज लेकर के जिसमें हाथियों की बड़ी तादाद थी आया, मक्का वाले इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। 60,000 की फौज लेकर के आ गया और चाहता था कि अपनी ताकत और कुव्वत के नशा में, अपनी बादशाहत के नशा के अंदर इस बड़ी तादाद वाली फौज के जरिए मैं बैतुल्लाह शरीफ को नऊज़ु बिल्लाह खत्म कर दूंगा, ढा दूंगा। सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मोहतरम है, आपकी पैदाइश से 40 दिन पहले ये वाकया पेश आया। सरदार अब्दुल मुत्तलिब बैतुल्लाह शरीफ का पर्दा पकड़ करके रो कर कहने लगे, ऐ रब्बुल बैत, ऐ रब्बे अतीक के मालिक, इस मुबारक खाने काबा के मालिक, हम दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते, ये तेरा घर है, तू इसकी हिफाजत कर, और तू अगर हिफाजत करेगा तो कोई इसको मिटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता है, हम मक्का वाले इसकी हिफाजत नहीं कर सकते। वो इल्हाव सारी के साथ दुआ मांग करके सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब मक्का वालों को लेकर पहाड़ियों पर जाकर बैठ गए कि देखते हैं कि अल्लाह तबारक तआला अपने घर की हिफाजत कैसे करता है। मक्का खाली हो गया, अल्लाह का घर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, जाहिर तौर पर इबादत के कोई सामान मौजूद नहीं। अब्रहा की फौज ने तैयारी की, करीब आ गए, थोड़ी दूर थे, बैतुल्लाह पर नजर पड़ी तो हाथियों ने अपना सर झुका दिया और आगे चलने से इनकार कर दिया। कोशिशें की गई, अल्लाह का गैबी लश्कर आया, फरिश्तों की तादाद नहीं थी, छोटी छोटी चिड़िया अबाबीन आई और ऊपर से छोटे छोटे पत्थर चने के दाने की तरह से, मटर के दाने की तरह फेंके। थोड़ी ही देर में 60,000 की फौज खत्म हो गई, गुस्सा हो गए, तहस नहस हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने घर की हिफाजत की, वह भी लश्कर आया, छोटी छोटी चिड़ियों के जरिए से अपने घर की हिफाजत की। इस वाक्य से मक्का वालों की बड़ी इज्जत हो गई और मक्का वालों के दिल में अल्लाह के घर की इज्जत और बढ़ गई। अब अरब के दूर दूर इलाकों के अंदर कुरैश, जो अरब का सबसे बड़ा कबीला, इज्जत वाला मुअस्सस खानदान था, कबीला था, बड़ी इज्जत हो गई। अब तिजारत करने के लिए गर्मी के दिन हो शाम, ठंडी के दिन हो तो यमन, अपने तिजारती काफलों को लेकर ही जाते। रास्ते में इनकी बड़ी इज्जत होती कि कुरैश वाले कुरैश हैं, बैतुल्लाह शरीफ की खिदमत करने वाले हैं, बड़ी इज्जत होती, इनके काफलों को लूटा नहीं जाता, इनके सामानों को लूटा नहीं जाता, बड़ी मेहमान नवाजी भी होती, इनकी तिजारत बढ़ रही थी। इस वाकये के बाद तिजारत में और तरक्की हो गई, बिजनेसमैन थे, दूर दूर के इलाकों में जाकर के माल खरीदना और ला करके बेचना, फिर यमन और शाम वाले आकर के जिद्दा में अपनी दुकानें खोल करके बेचने लगे, इनको बड़ी आसानियां हो गई। अल्लाह ने बड़ा एहसान किया, इस बैतुल्लाह शरीफ की वजह से इनकी बड़ी इज्जत होने लगी। कुरान करीम की दूसरी सूरत जो सूरत कुरैश है, यह हकीकत में सूरह फील का एक हिस्सा है। اللہ تبارک و تعالیٰ قریش کو اپنا احسان بتلاتے ہیں کہ تمہارے لیے ہم نے سردیوں اور گرمیوں میں سفر آسان کر دیا جس کو تم بہت چاہتے تھے. ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, جس خدا نے اس گھر کی برکت سے تمہارے لیے سفر آسان کر دیے, تمہاری تجارت میں ترقیاں ہوئی, امن اور سکون کے ساتھ رہنے لگے, کوئی خوف اب نہیں رہا, تمہارے کھانے پینے کے سارے انتظامات ہو گئے. یہ ہم نے کیا اس گھر کی برکت سے, اس گھر کی برکت سے خداوند کریم نے تمہیں یہ سہولت عطا فرمائی. فلیعبدوا رب ھذا البیت, تمہیں چاہیے کہ اس رب البیت کی عبادت کرو جس خدا نے تمہارے اوپر احسان کیا. تمہاری تجارتیں بڑھی, تمہیں امن اور سکون ملا, کمانے کے راستے کھل گئے, خوف دل سے نکل گیا. فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم جوع وآمنہم من خوف, کھانے پینے کا سامان میں دیے گئے, سہولت مل گئی, چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرو, اس کے گھر کی عبادت کرو. یہ قریش کو بتایا گیا سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کا تعلق ہے. آپ قریش کے خاندان سے تھے, قبیلے قریشی میں آپ کی پیدائش ہوئی, بنی ہاشم آپ کا خاندان ہے. قرآن کریم ان صورتوں کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتلاتا ہے کہ ہم نے مکہ والوں کی اور احسان کی ان کو چاہیے تھا کہ رب البیت کی عبادت کریں, اللہ کی عبادت کریں. جو نعمتیں ہم نے دی, جو خوف ان کے دلوں سے نکال دیا, امن امان کی زندگی گزارنے لگے, ان کو چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت کریں. سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ, اللہ کے رسول ہیں, اور بیت اللہ اللہ کا گھر ہے, بیت اللہ رسول اللہ. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آ گیا, ہم دین لے کر کے آ گئے, جس گھر کی جس خدا نے حفاظت کی اس کے دین کی بھی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرے. فرما جو نعمت ملی کا شکر ادا کرو. ان صورتوں کا پیغام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمتیں دیں تو اس پر شکر ادا کرو. ایمان کی دولت, قرآن کریم جیسی عظیم نعمت دنیا کا عیش و آرام دے, تو اللہ کی عبادتوں میں اپنا وقت لگاؤ, اس کا شکر ادا کرو. قلوب ان طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ, جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ نعمت دینے والا اللہ ہی. ایمان کی نعمت, قرآن کی نعمت, دین کی نعمت, ان دو صورتوں کا پیغام ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرو. شکر ادا کرنے کی توفیق اللہ دے دے تو کس نعمتوں کے اندر بڑی برکتیں اللہ نے رکھی ہیں, خوف نکل جائے گا, امن امان مل جائے گا, کھانے پینے کی تنگیاں دور ہو جائے گی, برکتیں مل جائے گی. ان دو صورتوں کا پیغام یہی ہے. اکثر و بیشتر یہ صورتیں تلاوت کی جاتی ہیں. اللہ تبارک ایمان کی دولت دینا چاہیں تو پھر دروازے کھول دیتا ہے ہدایت کا. بغداد آج بھی ایک بہت بڑا شہر مانا جاتا ہے, آج تو تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے, لیکن یہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے, بڑے بڑے اولیاء کرام پیدا ہوئے. مشر نام کا ایک آدمی غلط زندگی گزارتا تھا, شراب کے نشے میں مست رہتا تھا, اس کے بعد علماء نے فرمایا ہے کہ شراب خانے خود بھی چلاتا تھا. ایک دن شام کے وقت نشا کی حالت میں گھر واپس آ رہے تھے, جم رہے تھے نشا میں, راستے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا نظر آیا, कागज का एक टुकड़ा पड़ा हुआ नजर आया, नजर गई उठा लिया। किशन ने हाथ में उठाया तो देखा कि इस पर लिखा हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, रहमान रहीम नाम है। आंख खुल गई, कागज को उठाया, साफ किया और जबान से निकल गया ये रहीम और करीम मौला का नाम है, मुबारक नाम है, मेरा रब बड़ा रहीम और रहमान है। कागज को साफ किया, दुकान पर गए, एक दो दिरहम का अतर दिया, कागज पे लगा दिया, खुशबूदार बना दिया और अपने सर पर रख करके घर में आए। घर में ऊंची जगह पर रख दिया, बड़ी इज्जत की अल्लाह के इस नाम की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की इज्जत दिल में बैठ गई, बड़ी इज्जत से ऊपर रखा। नहा धोकर सो गए, आज इत्मीनान था, चलना तबारक तआला ने एक ना एक नेकी करने की तौफीक दी, उसके नाम की कदर करने की तौफीक दी, इसकी अजमत दिल में बिठा दी। उसी जमाने के एक बुजुर्ग गालिबन हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम किताबों में लिखा हुआ है। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो बसरा में रहते थे, बड़े अल्लाह वाले थे, अल्लाह ने बड़ी इल्म अमल की दौलत से नवाजा था। हजारों आदमी उनकी खिदमत में पहुंच करके दीन की बातें सुनते और अपनी इस्लाह करते थे। रात को ये सोए हुए तो आसमान की बुलंदी से अर्श अज़ीम से आवाज आई, हसन उठो। अल्लाह ने बड़ी इल्म अमल की दौलत से नवाजा था। हजारों आदमी उनकी खिदमत में पहुंच करके दीन की बातें सुनते और अपनी इस्लाह करते थे। रात को ये सोए हुए तो आसमान की बुलंदी से अर्श अज़ीम से आवाज आई, हसन

दोस्तों के अंदर लिख दिया, तू तौबा कर ले, तेरी तौबा भी कबूल, अपने नेक बंदों में मैंने उसको शामिल कर लिया है। जाओ बशारत सुना दो हसन। हजरत इमाम हसन बसी रहमतुल्लाह अलैह चौंक गए, पिछले की हालत से वाकिफ थे, शराबी थे, नशा में मस्त रहते थे। सोने हुए अल्लाह के हुक्म से बिश्र के घर पर पहुंचे, दरवाजा खिटखिटाया, अस्सलाम वालेकुम पर की आवाज दी। बिश्र सोए हुए थे, आंख खुली, आवाज सुनी, बोले कौन? बोला हसन। बोले कौन हसन? बोला हसन बसरी। कौन गए कि अल्लाह वाला मेरे घर पर? जल्दी से उठा कपड़े पहन करके दरवाजा खोला, इमाम हसन बसी रहमतुल्लाह अलैह निपट गए, घर में बैठ गए। हसन हजरत इमाम हसन बसरी फरमाया, बिश्र तुमने क्या काम किया कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श से मुझे पैगाम दिया कि बिश्र को बताओ मैंने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया और अपनी नेक बंदों में तुझे शामिल कर लिया। बिश्र वो कागज उठाकर लाकर के दिखाने लगे, फरमाया मैंने ये एक नेकी की थी कल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की इस कागज के साथ मैंने मोहब्बत की। हसन इमाम हसन बसी रहमतुल्लाह फरमाने लगे, बिश्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रहमानियत और रहीमी दिखाई, उसकी शान रहीमी को जोश आ गया, तुझे माफ कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे अपना बना दिया है। ये सुनते ही चीख मारी, दौड़ते हुए जंगल में चले गए, अपने मौला को पुकारने लगे, तू बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, इस गुनहगार को तूने कबूल कर लिया, मेरी तौबा कबूल कर ले। हिदायत के दरवाजों को खोल दिया रब्बे करीम ने। फिर बिश्र का वो हाल हो गया जब जूते पहनना छोड़ दिए, कि अल्लाह की जमीन पर जूते पहनकर चलना इस जमीन की अल्लाह की बनाई हुई चीज की नाकदरी है, बेइज्जती है, इसीलिए उसको बिश्र हाफी कहते हैं, नंगे पांव वाला। अब हिदायत के दरवाजे खुल गए, इल्म अमल के दरवाजे खुल गए, लोग उनकी खिदमत में आकर के दीन की बातें सीखने लगे। इस रास्ते से वो गुजरते, जानवर उस रास्ते पर पाखाना और पेशाब नहीं करता था। पूरे बगदाद के अंदर बिश्र की इबादत मशहूर हो गई, लोग उनके पास हिदायत की बातें लेकर आने लगे, हिदायत सीखने के लिए आए, दीन की बातें सीखने के लिए आए। एक दिन चरवाहा अपनी बकरियों और अपने जानवरों को लेकर जंगल से शाम को रात के वक्त आ रहा था, उस गली से उस रास्ते से उसके जानवर आ रहे थे जिस रास्ते पर अक्सर बिश्र हाफी चलते थे और नंगे पांव चलते थे। आज पहली मर्तबा उनके जानवरों ने वहां पेशाब कर दिया उस रास्ते पर। चरवाहा बोल उठा, खुदा की कसम बिश्र का इंतकाल हो गया है, वरना मेरे जानवर इस गली के अंदर इस रास्ते पर पेशाब पाखाना नहीं करते थे जहां इस रास्ते से बिश्र चलता था। शहर में आया तो मालूम हुआ कि बिश्र का इंतकाल हो गया और वक्त वही था इस वक्त उनके जानवरों ने पेशाब किया था। अल्लाह हिदायत दे दे ऐसे रास्ते, हिदायत मांगी, अल्लाह के नाम की कदर कर ले, अल्लाह के दीन को अपनी जिंदगी में ला ले, अल्लाह के पाक नाम के साथ मोहब्बत करने लग जाए और उसकी इबादतों के अंदर वक्त गुजार जाए, हिदायत के दरवाजे खुलते। रब्बे करीम ने कितनी बड़ी दौलत अता फरमाई, अल्लाह से हिदायत मांगी जाए, हिदायत के दरवाजे खोलने के लिए अल्लाह को पुकारा जाए। ये दीन अल्लाह ने बहुत मुबारक दिया है, ये मिटने के लिए नहीं आया है, दुनिया की कोई ताकत इसको मिटा नहीं सकती। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने रखी अजब लचक रखी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने रखी अजब लचक रखी है, जितना भी इसको दबाएंगे उतना ही उभरता है। जैसे गेंद को बॉल को दीवार पर जितना जोर दीवार पर जितने जोर से मारेंगे वो वापस आएगा। अल्लाह ने एक दीन दिया, वो

0: बुझाया नहीं जाएगा। युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाह, ये अल्लाह के अल्लाह का दीन, अल्लाह का नूर है, इसको कोई बुझा नहीं सकता है। अल्लाह तबार ऐसे ऐसे लोग दुनिया में पैदा करेंगे जो हिदायत की रोशनी दिखाएंगे। रब करीम हम सबको इन बातों पर यकीन नसीब फरमा दे और अपने शुक्रगुजार बंदा बना दे। अल्लाह के घर की इज्जत अजमत दिल में बिठा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से मोहब्बत करने वाले बन जाए। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, आपके लाई हुई शरीयत की मोहब्बत हमारे दिलों में बैठ जाए। इसकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला से करनी चाहिए और इसी पर चलना चाहिए और इसी पर मौत आने की अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका तव्वाबुर रहीम। आमीन।
1: भी आप सुन रहे थे आज जुमा है प्रोग्राम में महरूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान। इस स्टेशन पर आज जुमा है प्रोग्राम आप सुन सकते हैं हर शुक्रवार को जुमे के दिन 9 से लेकर करीबन 9:30 बजे तक।
2: अऊज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु ला

0: वो जिंदा जावेद हस्ती जो तमाम कायनात को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। वो ना सोता है और ना उसे ऊंग लगती है। जमीन और आसमानों में जो कुछ है उसी का है। कौन है जो उसकी जनाब में उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके? जो कुछ बंदों के सामने है उसे भी वो जानता है, और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो वाकिफ है, और उसकी मालूमात में से कोई चीज उनकी गिरफ्त इदराक में नहीं आ सकती इल्ला ये कि किसी चीज का इल्म वो खुद ही उनको देना चाहे। उसकी हुकूमत आसमानों और जमीन पर छाई हुई है, और उनकी निगेबानी उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं है, बस वही एक बुजुर्ग को बरतर जात।
1: और रेडियो सब इंडिया ब्रिस्बेन पर मैं हूं आपके साथी फिरोज खान। हर जुमे के दिन 9 से लेकर 9:30 बजे तक आप सुनते हैं मरहूम हजरत मौलाना बसीर अहमद दीवान के साथ आज जुमा है प्रोग्राम, जिसको हम पेश करते हैं हर शुक्रवार को जुमे के दिन 9 से लेकर 9:30 बजे। और हम आपको याद दिला दें कि हर रविवार को 7 से लेकर 8 बजे तक आप सुनते हैं एक और इस्लामिक प्रोग्राम, जिसमें हम पेश करते हैं हजरत मौलाना फजलदाद के साथ सवाल और जवाब, हर रविवार को 7 से लेकर 8 बजे तक। फिलहाल हर शुक्रवार की तरह हर जुमे के दिन जुमे प्रोग्राम के बाद आपके लिए हम पेश करते हैं चुने हुए रिलीजियस विंटेज कवाले हमारे प्लेलिस्ट से निकाली हुई। यह है रेडियो 1701 और मैं हूं आपका साथी फिरोज खान।

हर जुमे के दिन 9:30 से लेकर 10 बजे तक आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं रिलीजियस कवालीज, मजहबी कवालियां, ओल्ड विंटेज कवाली हमारे पर्सनल प्लेलिस्ट से निकाली हुई। मैं हूं आपके साथी फिरोज खान।

रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान। मैं आपको याद दिला दूं कि हर रविवार के सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक आपके लिए हम पेश करते हैं हमारा साप्ताहिक इस्लामिक प्रोग्राम, जिसमें आप सुन सकते हैं सवाल और जवाब हजरत मौलाना फजल दाद के साथ। और हर जुमे के दिन फ्राइडेज को आपके लिए 9 से लेकर 9:30 बजे तक महरूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान के साथ आप सुनते हैं जुमा बयान। और फिर 9:30 से लेकर 10 बजे तक आपकी खिदमत में ओल्ड विंटेज कवालीस, हमारी पर्सनल प्लेलिस्ट से निकाली हुई चुने हुए ओल्ड विंटेज कवालीस।

अभी आप सुन रहे थे कुछ चुने हुए मजहबी कवालियाँ, ऑल विंटेज कवालियाँ हमारे प्लेलिस्ट से निकाली हुई। हर जुमे के दिन शुक्रवार को हम आपके लिए पेश करते हैं हमारा विशेष प्रोग्राम। आज जुमा है, 9 से लेकर 10 बजे तक 9 से लेकर 9:30 बजे तक आप सुनते हैं महरूम बशीर अहमद दीवान से जुमा बयान, और उसके बाद हम करीबन 9:30 से लेकर 10 बजे तक आपकी खिदमत में पेश करते हैं चुने हुए मजहबी कवालियाँ, ऑल विंटेज कवालियाँ। अगले एक बार तक के लिए आपके साथ फिरोज खान की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूं हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान संगीत की जानकार हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79 ब्रिस्बेन पर।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, मॉर्निंग जो है वो दस्तक दे चुकी है आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में। और एक और इस मॉर्निंग के साथ खास काम हुआ है कि हमने दस्तक दे दी है आपके घरों में, आपकी गाड़ियों में। और उम्मीद करते हैं कि इस वक्त नींद तो खुली चुकी है आपकी अच्छे से, है ना। तो जिंदगी की सुबह जो है वो एक हसीन और बेहतरीन सुबह है, अपनों के साथ और अपनों के प्यार की सुबह है। इस सुबह को जीने के लिए और बेहतरीन बनाने के लिए हम आ गए हैं लेकर आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। जी हाँ, ब्रेकफास्ट पर ढेर सारी बातें।